तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7:00। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशन और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:00 सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9:00 हमारा स्वास्थ्य है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम समस्या समाधान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बताई दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10:00 और 10:00 कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच, आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:00 और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए।
2: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM मते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करा हो हमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आदिवासी संस्कृति हरते बहुउद्देश्य कृषि वानिकी नो एक समाधान थी सके। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कानी बाते थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहू आप रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: ભાઈ બોનું ગીત તો આઈશું પૂરું, નાણા ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપ સબનું ઘણે માન સ્વાગત કરો હો અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ બોનું ગીત કે પહેલા આપને વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે હર તે આદિવાસી સંસ્કૃતિ બહુઉદ્દેશ્ય કૃષિ વાનગીનું એક સમાધાન થઈ શકે. તો ભાઈ બોનું અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી મનીષજી સર. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલિ.
0: સર આપકા બહુ બહુ સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુ બહુ ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કી આદિવાસી સંસ્કૃતિ જો હૈ વો કિસ તરીકે સે વનો કે સંરક્ષણ મેં અપના યોગદાન દે સકતી હૈ. ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કી વન હમારે લિયે બહુ મહત્વપૂર્ણ હૈ. અભી કે સમય મેં હમ દેખ રહે હૈ કી વનો કે સંરક્ષણ કો લેકર હર કોઈ પ્રયાસ કર રહા હૈ. और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है. तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है.
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास है और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं. वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है
0: बिल्कुल
1: उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है. और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं. पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, परागण करने वाले कीट, मिट्टी की उर्वरकता, जल स्रोतों और जलवायु संतुलन, इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है.
0: बिल्कुल.
1: तो जिसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारें.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयां और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं. यही सर अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी.
1: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है. प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं. यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है. अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हों.
0: जी जी.
1: इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां वागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं. पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है, बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: वन संरक्षण की योजनाओं में इन परिस्थिति की और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं, उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। यहीं सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
1: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं, उनका बहुत विशेष महत्व है।
0: जी।
1: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है, जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है।
0: जी।
1: जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है, स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है।
0: जी।
1: क्योंकि ये कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती है।
0: जी।
1: तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं।
0: जी जी।
1: और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें, तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया। जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहां पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई।
0: जी जी।
1: और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहां वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहां नजर आने लगी है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है, उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं और किस तरीके से ये चीजें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। यही सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियां हम देखते हैं, उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार जरूरत क्यों है।
1: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं, जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानु वन, देवनु वन की जो संस्कृति, हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है। क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो कोई रोक नहीं है, पर यहां से पेड़ों को काटा नहीं जाता।
0: जी जी।
1: क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें।
0: जी जी।
1: इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने पर्यावरण के साथ भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
0: जी जी।
1: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
0: जी जी।
1: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડતા કહ હતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હે। આશા કરા હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડ, પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
3: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
4: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
3: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
4: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
3: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
6: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
5: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
6: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
5: होवे आज नाना ना कदम है, ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है गांव के बुजुर्ग और बच्चों के रिश्ते को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि गांव की सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती

0: शुरुआत में पहले साथियों का मनोरंजन करवाएं इस गीत के साथ में?
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहेंगे हम कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं गांव के बुजुर्ग और बच्चों के रिश्तों को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: हम जैसा कि जानते हैं अंजलि जी की बुजुर्ग जो होते हैं वो अनुभव का भंडार होते हैं, क्योंकि गांव के बुजुर्ग सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते बल्कि जीवन की कठिन राहों को पार करके ज्ञान के सागर वे बन जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: हम देख सकते हैं कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं, जीवन के सही गलत का फर्क बताते हैं, परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने का भी काम करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: साथ ही जो दादी नानी की कहानियां होती है वह केवल बच्चों के लिए मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की सबक भी होती है अंजलि जी।
1: जी हाँ,
0: इन कहानियों में छिपी सीख श्रोता साथियों बच्चों के चरित्र को मजबूत बनाती है।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, बात करें तो बच्चे गांव की जान होते हैं, उनकी हंसी, शरारते और सवाल बुजुर्गों के जीवन में नई रोशनी लाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों की मासूम बातें बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करती है श्रोता साथियों, उनकी जिज्ञासा बुजुर्गों को भी सक्रिय और खुश रखती है। बच्चों के साथ समय बिताकर बुजुर्ग खुद को फिर से जवान महसूस करते हैं, इस तरह ये रिश्ता एक दूसरे को सहारा देता है।
0: जी,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव में त्योहार, मेलों और रीति रिवाजों का विशेष महत्व होता है। इन सब का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाने का काम बुजुर्ग ही करते हैं। त्योहारों की कहानियाँ, लोकगीत और कहावतें, खेत बाड़ी की पुरानी तरीके, ये सब बच्चे बुजुर्गों से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और यही सीख उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ कर रखती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। वहीं अगर हम बात करें तो आज के समय में ये रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। श्रोता साथियों, मोबाइल और टीवी ने बच्चों को दूर कर दिया है।
1: बिल्कुल,
0: संयुक्त परिवार टूटकर छोटे परिवारों में बदल गए हैं और बुजुर्गों को समय और सम्मान कम मिल रहा है अंजलि जी।
1: जी हाँ,
0: अगर देखें तो ये बदलाव चिंताजनक भी है दोस्तों, क्योंकि इससे बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और जो बुजुर्ग हैं वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि बदलते समय के साथ साथ इन दोनों पीढ़ियों का जो रिश्ता है वो कमजोर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल, कह सकते हैं कशिश के इस खूबसूरत रिश्ते को बचाने के लिए हमें कुछ कदम भी उठाने होंगे, जैसे कि बच्चों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करना है, बुजुर्गों की कहानियों और अनुभवों को महत्व देना है, परिवार में एक साथ बैठने और बात करने की परंपरा को जीवित रखना है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रम में बुजुर्गों की भागीदारी हमें बढ़ानी होगी। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि गांव के बुजुर्ग और बच्चों का रिश्ता एक पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें बुजुर्ग हैं और नई शाखाएं बच्चे। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी हरा भरा रहेगा। अगर हम इस रिश्ते को खो देंगे तो हम न केवल अपने बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को भी खो देंगे।
0: जी हाँ,
1: हम सबको मिलकर कशिश संकल्प लेना होगा कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनसे सीखेंगे और बच्चों को उनसे जोड़ेंगे।
0: बिल्कुल,
1: ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस अनमोल रिश्ते की गर्माहट को महसूस कर सके।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर रहे हैं बुजुर्गों और बच्चों के रिश्तों को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और गीत यहाँ पर सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना था कि किस तरीके से गांव के बुजुर्ग और बच्चों का रिश्ता होता है।
1: बिल्कुल,
0: यही दोस्तों आपको एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं जो हर घर की सच्चाई है। एक दादा और उनके पोते की कहानी, रिश्ते की, अपनेपन की और उस खालीपन की जिसे सिर्फ प्यार से भरा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक गांव था श्रोता साथियों रामपुर, उसमें एक बूढ़े दादाजी रहते थे, नाम था रामकिशन। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखों में एक चमक जैसे आज भी जिंदगी से कुछ कहने को बाकी हो। उनका एक पोता था कशिश चिंटू। चिंटू बहुत चंचल, शरारती और सवालों से भरा हुआ बच्चा था। हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता चिंटू भागकर दादाजी के पास पहुंच जाता। दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? दादाजी भी मुस्कुराते और कहते, अरे आज तो एक बहादुर किसान की कहानी सुनाऊंगा। और फिर शुरू होती कहानियों की दुनिया, कभी राजा रानी, कभी जानवरों की बातें, तो कभी पुराने दिनों की सच्ची घटनाएं। इन सब के बीच रिश्तों में मिठास आती। चिंटू को दादाजी के साथ रहना सबसे अच्छा लगता था। वो उनके साथ खेत में जाता, पेड़ों के नीचे बैठता और मिट्टी में खेलता।
1: बिल्कुल।
0: दादाजी उसे सिखाते कशिश कि बेटा, पेड़ हमें बिना कुछ मांगे छांव देते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। चिंटू मासूमियत से पूछता, दादाजी आप भी पेड़ जैसे हो क्या? दादाजी हंसते हुए कहते, हाँ बेटा, और तुम मेरी छांव हो। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। चिंटू के पापा शहर से एक स्मार्टफोन लेकर आए। अब चिंटू का समय बदल गया, वो दादाजी के पास कम और मोबाइल के पास ज्यादा रहने लगा।
1: बिल्कुल।
0: चिंटू आज कहानी नहीं सुनोगे? दादाजी ने पूछा। नहीं दादाजी, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, चिंटू ने बिना देखे जवाब दिया। दादाजी की आंखों में हल्की उदासी छा गई। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी अब वहाँ सन्नाटा था। दिन बीतते गए, दादाजी अब ज्यादा चुप रहने लगे। जो उसी पेड़ के नीचे बैठते जहाँ कभी चिंटू उनके साथ खेलता था, अब वहाँ कशिश सिर्फ हवा चलती थी और यादें। एक दिन दादाजी ने धीरे से कहा, शायद अब मेरी कहानियाँ पुरानी हो गई है। एक दिन चिंटू स्कूल से लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। आसपास कोई नहीं था, चिंटू डर गया और रोने लगा। दादाजी, दादाजी दूर से यह देख रहे थे। अपनी कमजोरी के बावजूद वो दौड़ते हुए आए, उसे उठाया और गले लगा लिया। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं यहीं हूँ ना। उस पल चिंटू को एहसास हुआ कि मोबाइल का गेम उसे संभाल नहीं सकता, लेकिन दादाजी हमेशा उसके साथ हैं। उस दिन के बाद सब बदल गया। चिंटू फिर से दादाजी के पास बैठने लगा, कहानी सुनता, बातें करता और उनके साथ समय बिताता। एक दिन उसने दादाजी से कहा, दादाजी आपके बिना तो मेरा बचपन अधूरा है। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। तो श्रोता साथियों, ये कहानी सिर्फ चिंटू और उसके दादाजी की नहीं, ये कहानी हम सब की है। आज हम सब अपनी भागदौड़ में इतने खो गए हैं कि अपने ही घर के बुजुर्गों को समय देना भूल गए। याद रखिए कि बुजुर्ग हमारे अतीत का अनुभव है, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर ये दोनों साथ हैं तो जीवन खूबसूरत है, और अगर ये दूर हो गए तो सब कुछ अधूरा है।
1: बिल्कुल।
0: एक छोटी सी बात, आज ही अपने घर के किसी बुजुर्ग के पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ आपके साथ बिताए उस पल का इंतजार कर रहे हो। तो कशिश, ये थी एक महत्वपूर्ण सी कहानी जो हमें सीख देती है कि किस तरीके से हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चों का जो रिश्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों को कि गांव के जो बुजुर्ग होते हैं और जो बच्चों का रिश्ता है, वो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे जीवन मूल्यों की सबसे मजबूत कड़ी है।
0: जी जी।
1: क्योंकि अंजलि जी, जब एक बच्चा अपने दादा दादी के पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुनता है, तो वह सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा होता, बल्कि वह जीवन जीने का तरीका सीख रहा होता है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, आज जरूरत बस इस बात की है कि हम इस रिश्ते को केवल यादों में न सिमटने दें, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में फिर से जिंदा रखें।
0: जी हाँ।
1: अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी, समझदार और संवेदनशील बने दोस्तों, तो उन्हें बुजुर्ग का साथ देना ही होगा। ऐसे में एक माता पिता होने के नाते हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, बल्कि उनके अनुभवों को अपनी ताकत बनाएंगे और बच्चों को उनके करीब लेकर जाएंगे। क्योंकि अंजलि जी, जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, वहीं सच्ची समृद्धि और खुशी बसती है।
0: बिल्कुल कशिश, समाज की मजबूती सिर्फ बड़े बड़े विकास कार्यों से नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे रिश्तों से होती है जो दिलों को जोड़ते हैं, गांव के बुजुर्ग और बच्चों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: अगर यह रिश्ता कमजोर होगा तो समाज की नींव भी कमजोर हो जाएगी। बच्चे बिना मार्गदर्शन के भटक सकते हैं और बुजुर्ग बिना सहारे के अकेले पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह समझें। हर परिवार, हर गांव, हर समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों को सम्मान मिले और बच्चों को उनका साथ। जब दोनों पीढ़ियां एक साथ चलेंगी तभी समाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, जो गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोताओं, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ।
2: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और मनीषा हमारी बातें रहने वाली है कि माँ के हाथ के भोजन में प्रेम, स्मृति और पवित्रता होती है।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, चाहे खाने की हजारों नई चीजें बाजार में क्यों ना आ जाए, लेकिन एक स्वाद ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
2: वो है माँ के हाथ का भोजन। उस भोजन में केवल मसाले नहीं होते श्रोताओं, उसमें छिपा होता है प्रेम, उसमें बसी होती है यादें और उसमें समाई होती है एक अद्भुत पवित्रता। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम ही यही है कि माँ के हाथ के भोजन में होते हैं प्रेम, स्मृति और पवित्रता।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं माँ के हाथ के भोजन में होती है स्मृति, प्रेम और पवित्रता।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, बल्कि वह भावनाओं, संस्कारों और रिश्तों का भी प्रतीक है।
1: जी हाँ,
0: दुनिया में चाहे कितने भी बड़े होटल, रेस्टोरेंट या फास्ट फूड क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ के हाथ के भोजन का स्वाद और उसके महक कभी नहीं बदलती। श्रोता साथियों, इसमें केवल मसाले और घी नहीं होते, बल्कि माँ का स्नेह, चिंता, आशीर्वाद और त्याग भी मिला होता है।
1: जी हाँ,
0: यही कारण है जागृति जी, जब कोई व्यक्ति घर से दूर जाता है तब उसे सबसे अधिक याद माँ के हाथ के भोजन की आती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। और हम देखते हैं कि जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत कुछ पा लेते हैं, जैसे कि नई तकनीक, आधुनिक सुविधाएं, बड़े बड़े होटल साथियों और स्वाद से भरी दुनिया। लेकिन इन सबके बीच एक स्वाद ऐसा भी है जिसे कोई होटल, कोई शेफ या फिर कोई मशीन कभी नहीं बना सकती जागृति जी, और वो स्वाद है माँ के हाथ के भोजन का स्वाद।
0: जी हाँ।
1: साथियों, माँ के हाथ से बनी रोटी केवल आटा और पानी का मेल नहीं होती, उसमें माँ का स्नेह होता है, माँ की ममता होती है, उसकी चिंता होती है, उसका त्याग होता है और उसका आशीर्वाद भी मिला होता है।
2: जी हाँ,
1: इसी कारण से दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में हम पहुँच जाने के बाद भी सबसे अधिक याद माँ के खाने को ही करते हैं।
2: बिल्कुल कशिश, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खाना अक्सर केवल एक जरूरत बनकर रह गया है। लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं।
1: जी जी।
2: हम देखते हैं मनीषा कि जब माँ रसोई में खाना बनाती है तो वो केवल आटा, दाल और सब्जी नहीं पकाती, वो अपने बच्चों के लिए चिंता, स्नेह और दुआएं भी उसमें मिला देती है।
1: बिल्कुल,
2: जब माँ पूछती है बेटा खाना खाया, तो वो सिर्फ सवाल नहीं होता श्रोता साथियों, वह एक माँ का प्रेम होता है।
1: जी जी।
2: दुनिया के बड़े बड़े होटल स्वाद दे सकते हैं, लेकिन अपनापन नहीं दे सकते।
1: जी हाँ।
2: महंगे रेस्टोरेंट सजावट दे सकते हैं, लेकिन माँ जैसी आत्मीयता नहीं दे सकते श्रोता साथियों।
1: जी जी।
2: माँ के हाथ का साधारण सा भोजन भी मन को संतोष देता है, क्योंकि उसमें भावनाओं की मिठास होती है।
1: जी हाँ।
2: कहा भी गया है कि माँ के हाथ का हर निवाला प्रेम से भर देता है जीवन का प्याला।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा आधुनिक जीवन शैली, पढ़ाई, नौकरी और सोशल मीडिया की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि वह घर और परिवार से दूर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: बाहर का चमकदार भोजन उसे आकर्षित करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि माँ के हाथ का भोजन केवल स्वाद नहीं बल्कि स्वास्थ्य, संस्कार और आत्मीयता का संगम है।
1: बिल्कुल,
0: माँ के हाथ के भोजन में स्मृति होती है क्योंकि वह बचपन की यादों को जीवित रखता है, प्रेम होता है क्योंकि श्रोता साथियों उसमें माँ का सच्चा स्नेह शामिल होता है, और पवित्रता होती है क्योंकि वह निस्वार्थ भावनाओं से बनाया जाता है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। और जैसा कि हम माँ के हाथ के भोजन के अनमोल स्वाद को लेकर बातचीत कर ही रहे हैं, तो देखते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तब उसकी पहली भूख माँ ही समझ पाती है।
0: जी,
1: वह बोल नहीं पाता जागृति जी, लेकिन माँ उसकी आंखों से पहचान लेती है कि उसे भूख लगी है।
2: जी हाँ,
1: धीरे धीरे श्रोता साथियों वही माँ अपने हाथों से उसे पहला निवाला खिलाती है। माँ का भोजन इसलिए विशेष नहीं होता साथियों क्योंकि उसमें महंगे मसाले होते हैं।
2: जी हाँ,
1: बल्कि इसलिए भी विशेष होता है क्योंकि उसमें ढेर सारी भावनाएं होती हैं।
2: बिल्कुल,
1: जैसे कि एक साधारण दाल रोटी भी माँ के हाथों से बनकर अमृत जैसी लगती है। कई बार हम जागृति जी बाहर का पिज्जा, बर्गर या फास्ट फूड बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चीजें हमें उबने लगती है।
2: जी हाँ।
1: परंतु माँ के हाथ की साधारण रोटी भी कितनी पुरानी क्यों न हो जाए, हमें श्रोता साथियों अच्छी ही लगती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें अपनापन होता है।
2: जी बिल्कुल,
1: माँ जब खाना बनाती है तब वह केवल भोजन नहीं पका रही होती बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और खुशी की चिंता भी उसमें शामिल कर रही होती है।
2: जी हाँ।
1: वह जानती है जागृति जी कि बच्चे को क्या पसंद आएगा, पिता को किस चीज से परहेज है और दादा दादी को कैसा भोजन चाहिए होता है।
2: बिल्कुल,
1: देख सकते हैं कि यही संवेदनशीलता माँ के भोजन को विशेष बनाती है।
2: जी हाँ
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से माँ के हाथ के भोजन में होती है स्मृति, प्रेम और पवित्रता को लेकर बातें चल ही रही हैं, और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
2: जी हाँ।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
2: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि माँ के हाथ के भोजन में होते हैं प्रेम, स्मृति और पवित्रता, तो स्मृति की अगर बात करें मनीषा और कशिश, तो युवा साथियों को हम बताना चाहेंगे कि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चे पढ़ाई, नौकरी या सपनों के कारण घर से दूर चले जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उस समय सबसे ज्यादा क्या याद आता है? माँ की डांट, घर की दीवारें? नहीं श्रोता साथियों, सबसे ज्यादा याद आता है माँ के हाथ का खाना।
1: बिल्कुल,
0: हॉस्टल में बैठा विद्यार्थी जब सूखी रोटी खाता है कशिश, तो उसे माँ के हाथ की गर्म फुलके याद आती है।

0: जी? शहर में नौकरी करने वाला युवक जब बाहर का खाना खाता है मनीषा, तो उसे माँ के हाथ की दाल की खुशबू की याद आती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि माँ का भोजन केवल स्वाद नहीं देता, वो बचपन की यादें भी वापस ले आता है।
1: बिल्कुल,
0: माँ के हाथ की रसोई में त्योहारों की खुशियाँ होती है, बरसात की पकौड़ियाँ होती है, सर्दियों का हलवा होता है, बीमारी में बनाई गई खिचड़ी होती है। हर व्यंजन के साथ कोई न कोई स्मृति जुड़ी होती है दोस्तों
1: जी?
0: जब जीवन कठिन लगता है तब वही यादें हमें अंदर से मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल, हाँ।
0: माँ के हाथ का भोजन हमें ये एहसास दिलाता है श्रोता साथियों कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, घर का प्रेम हमेशा हमारा इंतजार करता रहेगा।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम यदि कोई करता है तो वो है माँ। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कठिनाई सह लेती है, यही प्रेम उसके हाथ के बने भोजन में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
2: माँ हमेशा ये सोचती है कि उसके बच्चे क्या पसंद करते हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वो अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भोजन बनाती है।
1: बिल्कुल,
2: कई बार माँ स्वयं भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती।
1: जी हाँ।
2: हम देखते हैं कि जब बच्चा उदास होता है तब माँ उसका पसंदीदा भोजन बनाकर उसके मन को खुश करने की कोशिश करती है।
1: बिल्कुल,
2: जब बच्चा बीमार होता है तब माँ पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करती है।
1: बिल्कुल,
2: और उसके लिए हल्का और पौष्टिक भोजन बनाकर तैयार करती है। श्रोता साथियों, ये केवल कर्तव्य नहीं बल्कि सच्चा प्रेम होता है। आज के युवाओं को यह समझना चाहिए, माँ का प्रेम किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। बाहर के भोजन में स्वाद हो सकता है साथियों, लेकिन माँ के हाथ में जो भोजन होता है उसमें आत्मीयता होती है। यही आत्मीयता जीवन को सुंदर बनाती है।
1: जी हाँ मनीषा, इसी के साथ अगर बात करें माँ के भोजन की पवित्रता की, तो जैसा कि जागृति जी हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में भोजन को अन्न देवता कहा जाता है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, हमारे यहाँ भोजन बनाने को भी एक पवित्र कार्य माना जाता है। देखते हैं कि जब माँ रसोई में प्रवेश करती है तब वह स्वच्छता, श्रद्धा और सकारात्मक भाव लेकर भोजन बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं मन पर भी पड़ता है।
2: बिल्कुल,
1: ऐसे में श्रोता साथियों, यदि भोजन क्रोध, तनाव या फिर नकारात्मकता में बनाया जाए तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन माँ का भोजन अधिकतम प्रेम और शुभ भावना से ही बनता है जागृति जी।
2: जी हाँ।
1: इसलिए हम कह सकते हैं कि माँ के द्वारा बनाया गया भोजन पवित्र होता है।
2: बिल्कुल,
1: भारतीय घरों में आज भी कई माताएं ऐसी हैं जो भोजन बनाने से पहले ईश्वर को याद करती हैं।
2: जी हाँ।
1: और कुछ घरों में तो पहलाने वाला गाय के लिए निकाला जाता है जागृति जी।
2: जी हाँ।
1: और कुछ जगह पक्षियों के लिए दाना रखा जाता है।
2: बिल्कुल,
1: साथ ही ये जो परंपराएं हैं ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि भोजन केवल स्वयं के लिए नहीं बांटने के लिए भी बनाया जाता है।
0: बिल्कुल कशिश, हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि आज तकनीक का युग है, मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यस्त जीवन ने परिवारों के बीच दूरियां बढ़ा दी है। बहुत से युवा अपने माता पिता के साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर पाते मनीषा।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन याद रखिए श्रोताओं, परिवार के साथ बैठकर खाना केवल परंपरा नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम भी है। जब हम अपने माँ के साथ बैठते हैं, उनके हाथ का खाना खाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो वो पल माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: युवा साथियों को चाहिए कि अपनी माँ के श्रम का सम्मान करें, कभी कभी रसोई में उनकी मदद करें, उनके हाथ के भोजन की प्रशंसा करें और ये महसूस करें श्रोता साथियों कि ये प्रेम हर किसी के नसीब में नहीं होता। जिस दिन माँ का हाथ सिर से उड़ जाता है उस दिन इंसान को समझ आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या था।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोताओं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि यदि आज आपकी माँ आपके साथ है तो उनके हाथ के भोजन का सम्मान कीजिए, उनके प्रेम को समझिए, क्योंकि माँ का खाना केवल शरीर को ताकत नहीं देता, वो जीवन को संस्कार देता है, आत्मा को शांति देता है और दिल को अपनापन देता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे महंगा भोजन भी उस थाली के सामने छोटा है जिसमें माँ अपने हाथों से प्यार परोसती है। माँ के हाथ की रोटी में केवल स्वाद नहीं होता मनीषा और कशिश, उसमें प्रेम होता है, त्याग होता है, आशीर्वाद होता है और पूरा संसार होता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता का आप सम्मान करें, घर के भोजन का आदर करें और रिश्तों की मिठास को बनाए रखें।
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि माँ के हाथ के भोजन में केवल स्वाद नहीं होता बल्कि स्मृति, प्रेम और पवित्रता का अद्भुत संगम होता है।
1: बिल्कुल,
2: वह भोजन व्यक्ति को उसके बचपन, परिवार और संस्कारों को जोड़कर रखता है। आधुनिक जीवन शैली के भागदौड़ में युवा चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल कर ले, लेकिन माँ के हाथ के भोजन का महत्व कभी नहीं भूल सकते।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहें। बाहर की चमक दमक के बीच उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा सुख और शांति घर के प्रेम में छुपा हुआ है। माँ के हाथ का भोजन हमें यह सिखाता है साथियों कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती।
0: बिल्कुल,
2: प्रेम, अपनापन और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। इसीलिए हर युवा को अपने माँ के प्रेम का सम्मान करना चाहिए और परिवार के साथ बिताए गए इन अनमोल पलों को संजो कर रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना उससे भी जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: माँ के हाथ का भोजन केवल हमारे लिए स्वाद नहीं है बल्कि संस्कृति है।
2: बिल्कुल
1: साथियों, वो हमारे परिवार की आत्मा है, वो प्रेम की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। यदि आपकी माँ आज भी आपके लिए खाना बनाती है युवाओं, तो ये आपका सौभाग्य है। उनके हाथ का भोजन प्रेम से खाइए, उनके श्रम का आप सम्मान कीजिए, और यदि संभव हो श्रोता साथियों तो कभी कभी उनके लिए आप भी खाना बनाइए।
0: जी हाँ,
1: याद रखिए, दुनिया का सबसे महंगा भोजन भी माँ के हाथ की सादी रोटी की बराबरी कभी नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि माँ के हाथ के भोजन में प्रेम होता है, उसमें ममता घुली हुई होती है, उसमें स्मृति होती है साथियों, क्योंकि वही हमें बचपन से जोड़ता है, उसमें पवित्रता है क्योंकि वह निस्वार्थ भावना से बनाया जाता है। तो ऐसे में आप आज से ये संकल्प ले कि आप अपने परिवार के साथ भोजन करेंगे।
0: जी हाँ,
1: माँ के श्रम का सम्मान करेंगे, अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे साथियों, और प्रेम से बने भोजन की महत्वता को समझेंगे।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की कशिश, अब समय का मान रखते हुए विदा लेना चाहेंगे, पर विदा लेने से पहले जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और उन बातों को आप अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में श्रोता साथियों आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्र रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें होने वाली है कि हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किस तरह से करें। जैसे कि श्रोता साथियों आपको बताए कि लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है। अंजलि, लोकतंत्र हमें सिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं तब हम लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करते हैं।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वग्र रेडियो

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किस तरह से करें। तो अंजलि, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है।
1: बिल्कुल,
0: जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपनी राय व्यक्त करती है और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करती है। लेकिन जब समाज में हिंसा बढ़ती है तो भय का वातावरण भी पैदा होता है।
1: जी जी,
0: भय और लोकतंत्र कभी साथ नहीं चल सकते। लोकतंत्र का आधार विश्वास, संवाद और सहिष्णुता, साथ ही सम्मान भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बातों पर लोग गुस्से में आकर झगड़ा करने लगते हैं। कभी सड़क का विवाद, तो कभी परिवार में तनाव, तो कभी समाज में मतभेद और कभी विचारों के नाम पर टकराव। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हिंसा किसी समस्या का स्थायी समाधान है? लोकतंत्र हमें सिखाता है जागृति जी कि असहमति हो सकती है लेकिन दुश्मनी नहीं। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सम्मान बना रहना चाहिए। लोकतंत्र की असली ताकत डंडे में नहीं, संवाद में होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हिंसा केवल किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने का नाम नहीं है। कटु शब्द

0: तो बोलना, किसी का अपमान करना, धमकाना, नफरत फैलाना या किसी को मानसिक रूप से पीड़ा देना भी हिंसा का ही रूप है।
1: बिल्कुल।
0: जब व्यक्ति अपनी बात समझाने के लिए तर्क की जगह ताकत का प्रयोग करता है जागृति जी, तब हिंसा जन्म लेती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंसा ने कभी स्थायी शांति नहीं दी। हिंसा कुछ समय के लिए किसी को दबा सकती है, लेकिन दिल नहीं जीत सकती।
1: बिल्कुल अंजलि, आज हम देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों ने साबित किया है कि विकास का रास्ता हिंसा से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों से होकर गुजरता है। जब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, कानून का सम्मान करते हैं और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं, तब समाज आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो, उसका परिणाम हमेशा विनाशी होता है। हिंसा परिवार को तोड़ती है, समाज में अविश्वास बढ़ाती है और राष्ट्र की प्रगति को रोकती है।
0: बिल्कुल।
1: एक पत्थर फेंकना आसान है, लेकिन उसे टूटे विश्वास को जोड़ना बहुत कठिन होता है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं अंजलि कि छोटी से छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: शब्दों की हिंसा भी उतनी ही खतरनाक है श्रोता साथियों, जितना शारीरिक हिंसा। कटु भाषा, अपमान और नफरत फैलाने वाले संदेश समाज को कमजोर करते हैं। लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमति को सम्मान के साथ व्यक्त किया जाए।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आज हिंसा कई कारणों से बढ़ रही है। धैर्य की कमी इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि हम देखते हैं कि लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब मनमाफिक चीजें नहीं होती है तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। पहले लोग बैठकर बातें करते थे, आज बातचीत की जगह आरोप और तर्क वितर्क ने ले ली है।
1: जी हाँ।
0: कई बार अधूरी जानकारी और भड़काऊ संदेश लोगों को उकसा देते हैं और कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग अपनी राय को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और दूसरों की बात सुनना पसंद नहीं करते।
1: बिल्कुल।
0: इस कारण हम देखते हैं कि हिंसा लगातार बढ़ रही है। हिंसा के कई सारे दुष्परिणाम हैं, जैसे कि सामाजिक नुकसान, आर्थिक नुकसान और मानसिक नुकसान और लोकतांत्रिक नुकसान। श्रोता साथियों, जब भी अहिंसा की बात होती है तो सबसे पहले स्मरण होता है महात्मा गांधी का।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं जागृति जी कि गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी।
1: जी हाँ।
0: उनका मानना था कि सच्ची ताकत हिंसा में नहीं बल्कि आत्मसंयम और सत्य में होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में एक अनोखा उदाहरण बन गया था। जब कई देशों में हथियारों से संघर्ष हो रहा था, तब भारत ने सत्य, अहिंसा और जनशक्ति के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
0: बिल्कुल।
1: ये हमें बताता है कि परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक नहीं है। दृढ़ संकल्प, एकता और लोकतांत्रिक सोच भी बड़े बदलाव ला सकती है।
0: बिल्कुल।
1: जब किसी समाज में लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं, तब अराजकता फैलती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हर व्यक्ति अपनी नाराजगी हिंसा के माध्यम से व्यक्त करने लगे अंजलि, तो व्यवस्था चल ही नहीं सकती। इसीलिए श्रोताओं, लोकतंत्र हमें संवैधानिक रास्ते अपनाने की सीख देता है।
0: जी जी।
1: शिकायत हो तो संवाद करें, समस्या हो तो समाधान खोजें और अन्याय हो तो कानूनी मार्ग को जरूर अपनाएं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से महात्मा गांधी का जो संदेश था वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हमें हिंसा के रास्ते पर नहीं चलकर अहिंसा के रास्ते पर चलना है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र केवल संसद में नहीं होता, यह घर से शुरू होता है। जब परिवार में सभी बात सुनी जाती है, जब निर्णय मिलकर लिए जाते हैं, जब बच्चों को अपनी राय रखने का अवसर मिलता है, तब लोकतांत्रिक संस्कार विकसित होता है। इसी के साथ गांव और समाज में लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी सभी की होनी चाहिए, विवाद होने पर पंचायत और बातचीत का सहारा लेना है, अफवाहों से बचना है। इसी के साथ जागृति जी, सामाजिक एकता को हमें मजबूत करने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: महिलाओं और युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव से हमें बचना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। युवा देश की ऊर्जा है, यदि यह ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगेगी तो राष्ट्र का निर्माण होगा।
0: जी जी।
1: लेकिन हम कह सकते हैं कि ये हिंसा की ओर मुड़ जाएगी तो विकास की गति रुक जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है और अपनाना भी बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं अंजलि कि लोकतंत्र का पहला मूल्य है सहिष्णुता। इसका अर्थ है कि हम दूसरों की बात को सुने, चाहे हम उससे सहमत हो या नहीं। दूसरा मूल्य होता है समानता, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा मूल्य होता है न्याय, जिससे समाज में विश्वास बना रहता है। चौथा मूल्य होता है भागीदारी, जिससे हर नागरिक सक्रिय भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल।
1: हम कह सकते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि गुस्से और हिंसा से उनकी बात जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन श्रोताओं, इतिहास बताता है कि हिंसा से समस्या और बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: संवाद से समाधान निकलता है, जबकि हिंसा केवल नए विवाद पैदा करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी असहमति को दुश्मनी में न बदलें, अपने गुस्से को विश्वास का कारण न बनने दें और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें।
1: बिल्कुल।
0: जब हम सुनना सीखते हैं, जब हम समझ पैदा करते हैं, जब हम बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं, तब विश्वास बनता है, और जब विश्वास बनता है तब एक मजबूत, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथी, हम नफरत की जगह संवाद कर सकते हैं, हिंसा की जगह सहमति जता सकते हैं और टकराव की जगह सहयोग का रास्ता चुन सकते हैं, और यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है।
1: बिल्कुल।
0: यही जिम्मेदार नागरिकता का प्रमाण है और यही एक बेहतर भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
1: जी अंजलि, हम एक गांव की कल्पना करते हैं जहां दो समूह किसी मुद्दे पर असहमत हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथी, यदि दोनों पक्ष लड़ाई शुरू कर दे तो नुकसान पूरे गांव का होगा, लेकिन यदि वे बैठकर चर्चा करेंगे, पंचायत की सहायता लेंगे और मिलकर रास्ता खोजेंगे तो समस्याएं भी हल हो जाएंगी।
0: बिल्कुल।
1: और संबंध भी बने रहेंगे। यही लोकतांत्रिक सोच है श्रोता साथियों। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को भी लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दें, उन्हें सिखाएं कि दूसरों का सम्मान करना, धैर्य रखना और मिलकर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है।
0: जी जी।
1: परिवार लोकतंत्र की पहली पाठशाला होती है। यदि परिवार में संवाद और सम्मान होगा तो समाज में भी यही संस्कार दिखाई देंगे।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं अंजलि कि लोकतंत्र केवल चुनाव के समय वोट डालने तक सीमित नहीं है, ये हर दिन के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, सड़क पर, विद्यालय में, कार्यस्थल पर और घर में भी। हमें लोकतांत्रिक सोच अपनानी होगी। जब हम दूसरों की बात सुनेंगे, नियमों का पालन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे, तब हम लोकतंत्र को मजबूत बना पाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर व्यक्ति को महत्व देता है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ किसी की ताकत उसकी आवाज ऊंची होने से नहीं, बल्कि उसके विचारों की गुणवत्ता से पहचानी जाती है। इसलिए हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि बदलाव गुस्से से नहीं, जागरूकता से आता है, डर से नहीं, विश्वास से आता है, और टकराव से नहीं, सहयोग से आता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, आने वाली पीढ़ियां हमसे केवल विरासत में जमीन जायदाद नहीं लेगी, बल्कि हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारा सामाजिक वातावरण भी प्राप्त करेगी। इसलिए जागृति जी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे समाज को सौंपे जहाँ मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो, जहाँ विविधता हो लेकिन विभाजन न हो, और जहाँ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित और सुना हुआ महसूस करे। हमें अपने गांव, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और अपने समाज में शांति, संवाद और सहयोग की संस्कृति को मजबूत करना है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि जब नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब केवल सरकारें नहीं, पूरा समाज बदलने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और यही सच्ची प्रगति है, यही सामाजिक परिपक्वता है, और यही वह मार्ग है श्रोता साथियों, जो हमें एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और मानवीय भविष्य की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम जाना चाहेंगे। पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि याद रखिए, लोकतंत्र की असली ताकत बंद मुट्ठियों में नहीं बल्कि जुड़े हुए हाथों

0: में होती है। पत्थर उठाने वाला व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए चर्चा में आ सकता है, लेकिन संवाद करने वाला व्यक्ति पीढ़ियों तक सम्मान पाता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, समाज में शांति बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित भविष्य पाए, तो हमें हिंसा का मार्ग छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: असहमति हो सकती है लेकिन उसका समाधान संवाद से निकलेगा। मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनका उत्तर सम्मान और धैर्य से मिलेगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम हिंसा नहीं संवाद को चुने, हम नफरत नहीं सम्मान चुनेंगे, हम टकराव नहीं सहयोग चुनेंगे, हम लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करेंगे और एक मजबूत, शांतिपूर्ण तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई है और समय हो चला है विदा लेने का, विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे, ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है तनाव के स्वास्थ्य पर प्रभाव और बचाव के तरीके को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, प्रतिस्पर्धात्मक, व्यस्त हो गया है। आधुनिक जीवन ने श्रोता साथियों हमें अनेक सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही कई नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं।
0: जी हाँ,
1: इन्हीं चुनौतियों में से एक है तनाव। तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था है मनीषा, जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति, समस्या या जिम्मेदारी को अपनी क्षमता से अधिक महसूस करता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं तनाव के हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसके क्या समाधान हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन में तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से तनाव का सामना कर रहा है। विद्यार्थी को पढ़ाई और परीक्षा की चिंता रहती है, युवाओं को रोजगार और भविष्य की चिंता रहती है, किसानों

0: को मौसम और फल की चिंता रहती है, वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि उनको परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का तनाव रहता है। श्रोता साथियों, यदि तनाव सीमित मात्रा में हो तो व्यक्ति बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है, लेकिन अंजलि जी, तनाव जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह शरीर, मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
1: बिल्कुल
0: मनीषा। हम देखते हैं कि तनाव केवल मन की स्थिति नहीं है साथियों, बल्कि यह हमारे पूरे शरीर और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसीलिए तनाव के दुष्परिणामों को समझना और उनके समाधान की दिशा में कार्य करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ मनीषा, हम देखते हैं कि कुछ मात्रा में तनाव व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है श्रोता साथियों, तो यह स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। तनाव केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर, व्यवहार, रिश्तों और कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, तनाव को समझना और उससे बचाव के उपाय अपनाना आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है।
0: जी हाँ।
1: तनाव शरीर और मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो उसे उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं।
0: जी हाँ।
1: लेकिन श्रोता साथियों, जब यह स्थिति लगातार बनी रहती है और व्यक्ति को आराम या समाधान नहीं मिल पाता, तब तनाव समस्या का रूप ले लेता है।
0: बिल्कुल।
1: तनाव किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, विद्यार्थी, किसान, नौकरी पेशा लोग और गृहिणियां सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के तनाव का अनुभव करते ही हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव कई कारणों से हमारे जीवन में आ सकता है, जैसे कि आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, कार्यस्थल का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, साथ ही अकेलापन और भविष्य की चिंताएं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, ये सभी जो कारण है, इन्हीं कारणों से हमारे जीवन में है वो तनाव जो है बढ़ता जाता है। यही अंजलि जी, तनाव के दुष्परिणामों की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि तनावग्रस्त व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहने लगता है, उसे हर समय किसी अनहोनी की आकांक्षा रहती है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम देखते हैं कि अंजलि जी, जब व्यक्ति के अंदर तनाव होता है तो उसका आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाता है। लगातार तनाव है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है, उसे लगता है कि वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि तनाव के कई कारण हैं। आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कार्यस्थल पर दबाव, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, सामाजिक अपेक्षाएं और डिजिटल जीवन में सोशल मीडिया, इन सारी कारणों की वजह से हम देखते हैं कि मनुष्य को तनाव हो जाता है। हम देखते हैं कि इन सारी चीजों का स्वास्थ्य पर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हम देखते हैं कि तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार चिंता के कारण व्यक्ति हर समय चिंता में रहने लगता है।
0: जी हाँ।
1: उसे भविष्य की चिंता सताने लगती है, वह छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर व्यक्ति अवसाद का शिकार हो सकता है। उसे किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती और जीवन निराशाजनक लगने लगता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ तनाव व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, वह स्वयं पर विश्वास खोने लगता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, बताना चाहेंगे कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तनाव के कारण सिर दर्द, माइग्रेन और गर्दन में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। लगातार तनाव रक्तचाप बढ़ा सकता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तनाव हृदय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और दिल की बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। तनाव के कारण गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द और भूख में कमी जैसी समस्या भी हो सकती है। तनावग्रस्त व्यक्ति जो होता है, उसे अच्छी नींद नहीं आती और रात भर करवटें बदलता रहता है और बार बार नींद टूटती रहती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे तनाव के हमारे जीवन में क्या दुष्परिणाम है और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी हमने जाना था कि तनाव क्या है, ये तनाव हमारे जीवन में किन कारणों से उत्पन्न होता है और तनाव के दुष्परिणाम क्या है।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर हम बात करें सामाजिक जीवन में दुष्प्रभाव की तो हम देखते हैं कि रिश्तों में दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। तनाव के कारण व्यक्ति अपने परिवार और मित्रों से दूरी बनाने लगता है। श्रोता साथियों, तनावग्रस्त व्यक्ति दूसरों से खुलकर बात नहीं कर पाता, जिससे उसकी गलत फहमियां हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ऐसे लोग सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से भी अंजलि जी बचते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि तनाव व्यक्ति के व्यवहार में कई बदलाव लाता है। चिड़चिड़ापन बढ़ाना, गुस्सा अधिक आना, लोगों से दूरी बनाना, निर्णय लेने में कठिनाई, नकारात्मक सोच बढ़ाना, ये सभी तनाव के सामान्य लक्षण हैं।
0: बिल्कुल,
1: महिलाएं अक्सर घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं, इसलिए उनमें तनाव की संभावना अधिक हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हार्मोन असंतुलन, अनियमित मानसिक धर्म, थकान, कमजोरी, नींद की कमी, मानसिक दबाव, महिलाओं के लिए परिवार का सहयोग और स्वयं के लिए समय निकालना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरीके से हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि तनाव से बचाव के कई तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, जैसे कि व्यायाम तनाव कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे योग और ध्यान को भी हमें अपनाना है। योग और ध्यान मन को शांत करने में मदद करते हैं। नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है।
0: हाँ।
1: प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। इसी के साथ श्रोता साथियों फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध और पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और तनाव से लड़ने में भी मदद करते हैं। कामों की प्राथमिकता तय करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं, इससे अनावश्यक जो दबाव है वो कम होता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ मनीषा बताना चाहेंगे श्रोता साथियों को हर समस्या जो है उसके अवसर को हमें देखने की कोशिश करनी है।
0: जी हाँ।
1: उसे देखते देखते हमें उसकी आदत को तनाव के रूप में नहीं जाने देना है, इसलिए हमें हमारी सकारात्मक मानसिक मजबूती को बढ़ाने की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: अपनी समस्याओं को मन में दबाकर रखने के बजाय परिवार या मित्रों से साझा करें, बातचीत से मानसिक बोझ हल्का होता है।
0: जी हाँ।
1: मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, वास्तविक जीवन के संबंध और गतिविधियों को महत्व दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि उन्हें समय का सही प्रबंधन करना है। समय का उचित उपयोग श्रोता साथियों तनाव को कम करता है। पहले अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें, आवश्यक कार्यों से बचे नहीं श्रोता साथियों, अनावश्यक कार्यों से बचने की कोशिश करें और समय का पूरा उपयोग करें। साथ ही श्रोता साथियों अपने परिवार और मित्रों से बातचीत करना शुरू करें।
1: बिल्कुल।
0: अपनी समस्याओं को दूसरों लोगों से साझा करें, जिससे आपका मन हल्का होगा और तनाव है वो भी कम होगा। साथ ही श्रोता साथियों सोशल मीडिया का भी हमें सीमित उपयोग करना है। मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग चिंता और तनाव को बढ़ा सकता है अंजलि जी, इसीलिए इसका संतुलित उपयोग हमें करना है। श्रोता साथियों साथ ही आप संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना, बागवानी करना या अन्य जो रचनात्मक कार्य होते हैं वो भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अंजलि जी इन कार्यों से भी हमारा तनाव है वो काफी हद तक कम हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि तनाव केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार में संवाद बढ़ाया जाए, बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए, महिलाओं को सहयोग और सम्मान दिया जाए, कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण बनाया जाए, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। जब समाज मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही महत्व देगा जितना शारीरिक स्वास्थ्य को देता है, तब तनाव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तनाव आधुनिक जीवन की एक वास्तविकता है, लेकिन इसे जीवन पर हावी होने देना आवश्यक नहीं है। सही जीवन शैली, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, योग, संतुलन आहार और अच्छे सामाजिक संबंध तनाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ।
1: स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर की नींव है, इसलिए हमें तनाव के लक्षणों को समय रहते पहचानना चाहिए और उसके प्रभावी समाधान अपनाने चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से तनाव को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वावारा अमर हित्ता भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
2: राम राम।
0: होवे भाई बोनो, आप सब सांभळी रिया हो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे। मनीषा बोन, आज कार्यक्रम में अपने भाई बोनो की बातचीत विषय है कि आप देखी रहो कि अवरे ना टाइम घना खरा जो भाई बोन है एना में नशा नी जो चीजें हैं ई वधी रही है, ई वधारे नशो करे है ने एने कारण घना आका नी समस्याएं पैदा थई से है। ता सब समस्या नु समाधान आपणे हरते करी शको ने हरते सबने जागरूक करो कि नशा तकी दूर रहे एने बारे में आज आपणे हंगरी वाते करवा वारा हो।
0: હવે અંજલિ બોન, તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બોનો ખતી ઘણા આકાની વાતે રેંગા અબર હામળા ગીત ને મોરે કરે આપણી વાતે।
1: હવે તો ભાઈ બોનો આપ હમર તો રેજુ આપણું રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માટે।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है वृक्षारोपण के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि पेड़ पौधे प्रकृति की अनमोल देन है, इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है।
0: जी जी,
1: आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, प्रदूषण और जल संकट जैसी समस्याओं का सामना कर रही है, तब वृक्षारोपण एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय बनकर सामने आता है जो इन चुनौतियों से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि वृक्ष केवल हरियाली ही नहीं देते बल्कि जीवन देते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन पेड़ों से ही प्राप्त होता है। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु को शुद्ध बनाते हैं, और यदि धरती पर पेड़ न हो तो न केवल हवा दूषित हो जाएगी बल्कि जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाएगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी,
1: फल फूल लकड़ी औषधियां और अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ,
1: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कशिश बहुत से परिवार अपनी आजीविका के लिए पेड़ों और जंगलों पर निर्भर हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं कि शुरुआत में हम उन्हें पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये तो हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है। तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं वृक्षारोपण के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, जैसा कि आपने गीत से पहले हमारे साथियों को ये बता दिया था कि वृक्ष जो है वो हमारी प्रकृति का अमूल्य उपहार है। हम देखते हैं दोस्तों कि मानव जीवन का अस्तित्व वृक्षों पर ही निर्भर है।
1: बिल्कुल,
0: वृक्ष हमें प्राण वायु और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखा जाता है अंजलि जी कि पर्यावरण को संतुलित रखते हैं और वर्षा में सहायता भी करते हैं, साथ ही ये पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाने में अहम योगदान देते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, जहाँ आज बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी स्थिति में वृक्षारोपण और नए पेड़ लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता हो सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है।
0: जी जी।
1: इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन। वृक्षारोपण के रक्षक, वृक्ष पर्यावरण के रक्षक होते हैं। वे मिट्टी कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं और वृक्षा चक्र को संतुलित रखते हैं।
0: जी जी।
1: जब किसी क्षेत्र में अधिक पेड़ होते हैं श्रोता साथियों, तो वहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम में रहता है।
0: बिल्कुल,
1: प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। वे गर्मी को कम करते हैं और वातावरण को ठंडा और सुखद भी बनाए रखते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि वृक्षारोपण का मतलब है नए पौधे लगाना, उनकी देखभाल करना श्रोता साथियों, ताकि वे बड़े होकर हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रख सके। क्योंकि अंजलि जी, केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। देखते हैं कि वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना जाता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, वृक्ष जो है वो मानव जीवन के सच्चे मित्र माने जाते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं अंजलि जी।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया कि वृक्ष जो है वो हमें प्राण वायु यानी कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं।
1: जी हाँ,
0: यानी कि वृक्ष जो है वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं साथियों, और ऑक्सीजन जो है उसके बिना हमारे जीवन की कल्पना करना हमारे लिए काफी मुश्किल है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए वृक्षों को धरती का हरा भरा वातावरण कहा जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसका एक बड़ा कारण वनों की कटाई है। पेड़ कार्बन को अपने अंदर संग्रहित करते हैं और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने में सहायता करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जितने अधिक पेड़ होंगे श्रोता साथियों, उतना ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए वृक्षारोपण केवल पर्यावरण कार्य नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का अभियान है। गाँव में वृक्षों का महत्व और भी अधिक है। खेतों की मेड़ों पर लगाए गए पेड़ किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। कई पेड़ पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं। फलदार वृक्ष परिवार के पोषण में सहयोग करते हैं। नीम, पीपल, बरगद, आंवला, शीशम और करंज जैसे वृक्ष पर्यावरण के साथ साथ स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि में भी लाभदायक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर किसान अपनी भूमि के एक छोटे हिस्से में वृक्ष लगाए श्रोता साथियों, तो पर्यावरण और आय दोनों को सुधारा जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की, तो देखते हैं कि वृक्ष जो है वो पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित रखते हैं। वे दोस्तों वायु प्रदूषण को कम करते हैं, वातावरण में मौजूद जो हानिकारक गैस हैं उनका भी अवशोषण करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही वृक्ष जल चक्र को भी संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अंजलि जी। देखा जाता है कि अधिक वृक्ष होने पर वर्षा अच्छी होती है और पेड़ों की कमी से सूखा और जल संकट जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती है।
1: जी जी।
0: इसलिए हम हमारे श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों वृक्षारोपण करना हमारे लिए आज की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जान ही पा रहे हैं कि वृक्षारोपण करने से वृक्ष जो है वो हमें ढेर सारे लाभ प्रदान करते हैं और मानव जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कशिश हमारी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है वृक्षारोपण के महत्व को लेकर, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि पेड़ों से घिरा वातावरण मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। हरियाली तनाव को कम करती है और मन को शांति प्रदान करती है। कुछ शोध से पता चलता है कशिश के प्रकृति के निकट रहने वाले लोगों में मानसिक तनाव और कई बीमारियों का खतरा कम होता है।
1: बिल्कुल,
0: औषधीय गुणों वाले अनेक पेड़ जैसे कि नीम, तुलसी, आंवला और अर्जुन हमारे पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, चिकित्सा में भी उपयोगी साबित होते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही अगर मिट्टी संरक्षण की बात की जाए तो वृक्षों की जड़ें जो है वो मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखती है, जिससे मिट्टी का जो कटाव है वह नहीं होता। और दोस्तों, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाए तो वृक्ष जो है वो भूस्खलन और को रोकने में भी सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही जो पेड़ पौधे होते हैं वह जीव जंतुओं का आश्रय स्थल भी होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अनेक पशु पक्षी, जानवर और कीट पतंगे हैं जो वृक्षों पर अपना घर बनाते हैं।
0: जी जी,
1: वृक्ष होता साथियों जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वृक्षारोपण करना हमारे लिए काफी लाभदायक है।
0: बिल्कुल कशिश, वृक्षारोपण केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों सहित पूरे समाज की भागीदारी आवश्यक है।
1: जी जी,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि स्कूलों में वृक्षारोपण अभियान चलाए जा सकते हैं। बच्चों को एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी और वे प्राकृतिक संरक्षण के महत्व को समझ पाएंगे।
1: जी हाँ,
0: अक्सर हम पौधा तो लगा देते हैं कशिश, लेकिन उसकी देखभाल नहीं करते। उसका परिणाम ये होता है कि अधिकांश पौधे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। वृक्षारोपण की सफलता तभी संभव है श्रोता साथियों जब पौधा एक मजबूत वृक्ष बन जाए।
1: बिल्कुल,
0: पौधे को समय पर पानी देना, पशुओं से सुरक्षा करना, खाद डालना और उसकी नियमित निगरानी करना भी उतना ही आवश्यक है जितना पौधा लगाना। हमें एक व्यक्ति एक पौधा के साथ साथ एक व्यक्ति एक वृक्ष की जिम्मेदारी का संकल्प भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, वहीं अगर वृक्षारोपण के स्वास्थ्य लाभों को लेकर बात करें तो वृक्ष जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि वे हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं, गर्मी को कम करने का कार्य करते हैं, तनाव और मानसिक चिंता को भी कम करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमारा मन इससे काफी प्रसन्न होता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही जो धूल और प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं उन्हें भी वृक्ष नियंत्रित करने का काम करते हैं अंजलि जी, क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि हरी भरी जगहों पर रहने वाले लोग ज्यादा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है।
0: जी जी,
1: बढ़ता तापमान, अनियमित दिनचर्या, वर्षा, बाढ़, सूखा और ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं हैं जो इसका परिणाम है। दोस्तों, वृक्ष वातावरण से, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण बनते हैं अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाने से पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए वृक्षारोपण जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे प्रभावी उपाय माना जा सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, जब पूरा गांव मिलकर वृक्षारोपण करता है तो उसका प्रभाव कहीं अधिक दिखाई देता है। पंचायत, स्वयं सहायता समूह, किसान समूह, युवा मंडल, विद्यालय मिलकर सामूहिक अभियान चला सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: सड़क किनारे, विद्यालय परिसर, पंचायत भवन, तालाबों के आसपास और खाली सार्वजनिक भूमि पर पौधे लगाए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि प्रत्येक गांव हर वर्ष सैकड़ों पौधे लगाए तो उसकी देखभाल सुनिश्चित की जा सकती है और कुछ वर्षों में बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है।
1: जी,
0: वृक्ष केवल प्रकृति की सजावट नहीं बल्कि जीवन की निरंतरता के आधार है। वे हमें शुद्ध हवा देते हैं, जल संरक्षण में सहायता करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं, जैव विविधता को संरक्षित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज जब पर्यावरणीय चुनौतियां लगातार बढ़ रही है कशिश, तब वृक्षारोपण एक सामाजिक आंदोलन बनना चाहिए।
1: जी जी,
0: हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि किसी एक दिन पौधा लगाकर हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। वास्तविक जिम्मेदारी उस पौधे को बड़ा करके वृक्ष बनाने में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को कम से कम कुछ वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो हमारा गांव, हमारा समाज और हमारा देश अधिक हरा भरा, स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों वृक्ष जो है वो आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि लकड़ी उद्योग, कागज उद्योग, रबर उद्योग, फल उत्पादन और औषधि निर्माण जैसे अनेक क्षेत्र हैं अंजलि जी जो वृक्षों पर ही आधारित हैं।
0: बिल्कुल,
1: लाखों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वृक्षों और वनों से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों जो फलदार वृक्ष होते हैं वो किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके अतिरिक्त वृक्ष जो है वो पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर वन जो हैं वो लोगों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। अंजलि जी
0: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का एक दूरदर्शी प्रयास है।
1: जी।
0: जिस प्रकार एक परिवार अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करता है, उसी प्रकार वृक्ष लगाना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक आपदा संजोने जैसा है।
1: बिल्कुल,
0: आज हम जो पौधे धरती पर रोपते हैं वह कल किसी राहगीर को छाया देगा, किसी पक्षी को आश्रय देगा, किसी किसान की भूमि को सुरक्षित रखेगा और किसी बच्चे को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराएगा। वर्तमान समय में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।
1: जी हाँ,
0: सड़कें, भवन और उद्योग महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ हरियाली का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें तो करें, लेकिन उसकी भरपाई नहीं करें तो हम देखते हैं कि भविष्य में गंभीर चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है।
1: जी।
0: वृक्षारोपण इस संतुलन को बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें हम।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही है वृक्षों के महत्व और वृक्षारोपण की आवश्यकता को लेकर, यही अंजलि जी अगर हमारे साथियों को हम बताएं तो हम देखते हैं दोस्तों कि वृक्ष पृथ्वी के जीवन दाता माने जाते हैं, क्योंकि वे हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, भोजन, औषधि, छाया, स्वस्थ पर्यावरण और ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रदान करते हैं। दोस्तों, वृक्षों के बिना मानव जीवन और प्रकृति का संतुलन संभव नहीं है। आज अंजलि जब पर्यावरण संकट लगातार बढ़ रहे हैं, तब वृक्षारोपण का महत्व हमारे लिए समझना और भी अधिक जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि दोस्तों ये केवल एक अभियान नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की एक नींव है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, हमें वृक्षों को केवल उपयोगी वस्तु नहीं बल्कि जीवन साथी के रूप में देखना होगा। जिस धरती ने हमें रहने के लिए स्थान दिया, जिस प्रकृति ने हमें जल, वायु, भोजन प्रदान किया, उसके प्रति हमारा कुछ दायित्व है। ये दायित्व केवल बड़े अभियानों से नहीं बल्कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयासों से भी पूरा हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: आंगन में, खेत की मेड़ पर, स्कूल के परिसर में या गाँव की खाली भूमि पर लगाया गया एक पौधा भी बदलाव की शुरुआत बन सकता है। श्रोता साथियों, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने लगे कि पर्यावरण की रक्षा किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तब वास्तविक परिवर्तन संभव होगा। वृक्षारोपण की संस्कृति केवल एक अभियान नहीं बल्कि जन आंदोलन बननी चाहिए। बच्चों को प्रकृति से जोड़ना, युवाओं को पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बनाना और सामुदायिक स्तर पर हरियाली बढ़ाने के प्रयास करना समय की मांग है।
0: बिल्कुल,
1: हम केवल पेड़ लगाने की बात नहीं करें बल्कि हरियाली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ऐसा भविष्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं जहां स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल, हरे भरे गांव, संतुलित पर्यावरण हमारी पहचान बने। यही प्रकृति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी और यही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे मूल्यवान विरासत होगी।
0: बिल्कुल,
1: एक पौधा केवल मिट्टी में नहीं उगता श्रोता साथियों, वह उम्मीद, संरक्षण और बेहतर भविष्य का बीज भी बनता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अगर यही अगर शहरी क्षेत्रों में वृक्षों की बढ़ती आवश्यकता को लेकर बात करें तो आज हम देखते हैं कि शहरों में तेजी से कंक्रीट के भवन, सड़कें और औद्योगिक इकाइयां बढ़ रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण दोस्तों प्राकृतिक हरियाली कम होती जा रही है और शहरों में गर्मी का प्रभाव गांवों की तुलना में अधिक महसूस भी होने लगा है। हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे वैज्ञानिक है वो इसे हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं, जिसमें कंक्रीट और डामर जो है वो गर्मी को अधिक समय तक रोक कर रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ऐसे में वृक्ष तापमान को कम करने का प्राकृतिक साधन है। देखते हैं कि सड़क किनारे, पार्कों में और आवासीय क्षेत्रों में लगाए गए वृक्ष शहरों को अधिक रहने योग्य बना सकते हैं, क्योंकि वृक्ष केवल प्रदूषण ही नहीं बल्कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं।
1: जी जी,
0: देखा जाता है कि घने वृक्षों की पत्तियां और शाखाएं जो है वो ध्वनि तरंगों को अवशोषित करती है। इसलिए दोस्तों राजमार्गों, रेलवे लाइनों और औद्योगिक क्षेत्र के आसपास वृक्षों की हरित पट्टी विकसित की जाती है।
1: जी जी,
0: ताकि आसपास रहने वाले लोगों को अंजलि जी शोर से राहत मिल सके।
1: जी हाँ कशिश, हम देखते हैं कि किसी भी सभ्यता की वास्तविक समृद्धि केवल उसकी ऊंची इमारतों, आधुनिक तकनीक या आर्थिक विकास से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वो अपनी प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की कितनी रक्षा करती है।
0: जी जी,
1: वृक्ष इस प्राकृतिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। न बोलते हैं, न कोई मांग करते हैं, फिर भी जीवन के हर क्षण में मानव समाज को कुछ न कुछ देते ही रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए वृक्षों के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल उपयोगिता का नहीं बल्कि संरक्षण और सम्मान का होना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: आज आवश्यकता इस बात की है कि वृक्षारोपण को एक अवसर या औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखा जाए। इसे हमारी दैनिक सोच, सामाजिक संस्कृति और विकास की योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए।
0: बिल्कुल,
1: जिस प्रकार हम अपने घर, परिवार और आजीविका की चिंता करते हैं, उसी प्रकार अपने आसपास के पर्यावरण की चिंता करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक हरा भरा वातावरण केवल सुंदरता नहीं बढ़ाता बल्कि समाज में स्वास्थ्य और खुशहाली और स्थिरता का भी आधार बनता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें वृक्ष के सामाजिक जीवन की तो दोस्तों गांवों में बरगद, पीपल और नीम जैसे वृक्ष केवल पेड़ नहीं होते बल्कि सामाजिक जीवन का हिस्सा होते हैं। इनके नीचे लोग बैठकर अंजलि जी चर्चा करते हैं और बुजुर्ग जो है वो समय बिताते हैं।
1: जी जी,
0: साथ ही कई सामाजिक कार्यक्रम भी इन पेड़ों के नीचे ही आयोजित हो सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार वृक्ष समाज को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति में वृक्षों को विशेष सम्मान दिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: प्राचीन काल से ही पीपल, बरगद, तुलसी, बेल पत्र और आंवला जैसे जो वृक्ष हैं उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। साथियों, हमारे पूर्वज जो ने भी प्रकृति संरक्षण का संदेश देने के लिए वृक्षों को आस्था से जोड़ा था।
1: बिल्कुल,
0: इससे लोगों में अंजलि जी वृक्षों की रक्षा की भावना विकसित होती है।
1: जी हाँ कशिश, गाँव और शहरों में बढ़ती आबादी, बदलती जीवन शैली और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच वृक्ष हमें यह संदेश देते हैं कि विकास और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि हम आज सजग होकर हरियाली को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं तो आने वाले समय में अनेक पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल,
1: इसके लिए केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने की बजाय श्रोता साथियों जन भागीदारी को बढ़ावा देना होगा।
0: जी हाँ,
1: जब समुदाय स्वयं आगे बढ़कर प्रकृति संरक्षण को अपना दायित्व समझेगा तभी स्थायी और व्यापक परिवर्तन संभव होगा।
0: बिल्कुल,
1: प्रकृति हमें बार बार ये सिखाती है कि केवल देने वाला हमेशा महान होता है। वृक्ष इसी भावना के सबसे सुंदर उदाहरण है, वे बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में ऐसी सोच विकसित करनी होगी जो केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले कल के हित को ध्यान में रखे। वृक्षारोपण उसी दूरदर्शी सोच का प्रतीक है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी चल रही है, कुछ छोटी मोटी महत्वपूर्ण बातें और भी हैं जो आगे हम हमारे श्रोता साथियों से करना चाहेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना,
1: यही हाँ।
0: आपको कहना चाहेंगे कि जब हम वृक्षारोपण की बात करते हैं तो वास्तव में हम केवल पेड़ लगाने की नहीं बल्कि जीवन को सुरक्षित रखने की बात कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये एक ऐसा कार्य है कशिश जिसका प्रभाव वर्षों नहीं बल्कि पीढ़ियों तक दिखाई देगा। आज का समय हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को कैसे धरती सौंप कर जाएंगे। क्या वे स्वच्छ हवा में सांस ले पाएंगे? क्या उन्हें पर्याप्त जल मिलेगा? क्या वे प्रकृति की सुंदरता और जीव विविधता का आनंद ले सकेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर काफी हद तक हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है।
1: जी हाँ,
0: वृक्षारोपण हमें केवल पर्यावरण संरक्षण का रास्ता नहीं दिखाता बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है।
1: बिल्कुल।
0: जब कोई व्यक्ति एक पौधा लगाता है और उसकी देखभाल करता है कशिश, तो वह धैर्य, समर्पण और प्रकृति के प्रति प्रेम का परिचय देता है।
1: जी हाँ।
0: ये भावना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है। जिस समाज में लोग पेड़ों और प्रकृति की चिंता करते हैं, वह सामूहिक जिम्मेदारियां और सामाजिक चेतना भी अधिक मजबूत होती है।
1: बिल्कुल,
0: आज दुनिया अनेक पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है। ऐसे समय में कशिश वृक्षारोपण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है।
1: जी हाँ।
0: यह वह निवेश है जिसमें धन से अधिक महत्व हमारी इच्छा शक्ति और भागीदारी का है। एक छोटा सा पौधा समय के साथ विशाल वृक्ष बनकर न केवल पर्यावरण को लाभ पहुँचाता है बल्कि समाज को भी अनेक रूपों में समृद्ध करता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए वृक्षारोपण को केवल एक दिन या एक मौसम तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे जन जागरूकता और जन भागीदारी का स्थायी अभियान बनाना चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्राकृतिक वातावरण में ही अधिक बेहतर होता है, क्योंकि जब बच्चे पेड़ पौधों के बीच समय बिताते हैं तो उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है।
0: जी जी।
1: देखते हैं कि उन्हें प्रकृति से प्रेम करना, उनकी रक्षा करना, ये सभी चीजें जो है उन्हें सीखते हैं और सीखने का अवसर भी मिलता है। दोस्तों, आज हमारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाले कई दशकों तक लोगों को लाभ पहुंचाएगा।
0: बिल्कुल,
1: हम देख सकते हैं कि वृक्षारोपण वर्तमान पीढ़ी का एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ भविष्य की पीढ़ियां भी उठाएंगी। अंजलि जी,
0: जी जी।
1: इसलिए वृक्ष लगाना केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं बल्कि भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी निभाने जैसा कार्य है।
0: बिल्कुल कशिश, हमें यह समझना भी होगा कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध केवल लेने का नहीं बल्कि लौटाने का भी है। हमने वर्षों से धरती से जल, वायु, भोजन, संसाधन प्राप्त किए, अब समय आ गया है श्रोता साथियों कि हम प्रकृति को कुछ वापस लौटाएं। वृक्षारोपण इसी कृतज्ञता और जिम्मेदारी का सबसे सुंदर माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: यह कार्य न केवल पर्यावरण को संवारता है बल्कि मानवता के भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। आइए श्रोता साथियों, हम सब मिलकर ऐसा संकल्प ले कि जहाँ भी संभव हो वहाँ हरियाली बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
1: जी
0: अपने
1: हाँ।
0: परिवार, बच्चों और समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि एक हरा भरा वातावरण केवल प्राकृतिक संपदा नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, सुरक्षित भविष्य और समृद्ध समाज की पहचान होता है।
1: बिल्कुल,
0: आने वाले समय में हमारी पहचान इस बात से नहीं होगी कि हमने कितनी सुविधाएं प्राप्त की बल्कि इस बात से होगी कशिश कि हमने अपनी धरती को कितना सुरक्षित और समृद्ध बना कर अगली पीढ़ी को सौंपा है।
1: बिल्कुल,
0: वृक्ष लगाना एक साधारण कार्य दिखाई दे सकता है श्रोता साथियों, लेकिन इसके परिणाम असाधारण होते हैं। एक ऐसा कदम है जो प्रकृति, समाज और मानवता तीनों के हित में उठाया गया कदम है।
1: जी
0: जी। इसलिए आज कल लगाया गया प्रत्येक पौधा कल की आशा, विश्वास और जीवन का आधार बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि यदि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक वर्ष में केवल एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो कुछ वर्षों में दोस्तों करोड़ों नए वृक्ष तैयार हो जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: ये एक छोटा सा प्रयास पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके द्वारा ला सकता है। साथियों, देखा जाए तो पेड़ लगाना केवल एक दिन का काम है, लेकिन उससे बड़ा बनाना वृक्षों की जिम्मेदारी है। देखते हैं कि जिस धरती से हमें जीवन मिलता है उसे हरा भरा रखना हमारा कर्तव्य है।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, आज लगाया गया एक पौधा कल किसी को छाया देगा, किसी को फल देगा और किसी को शुद्ध वायु देगा, तो देख सकते हैं कि किसी का जीवन भी बचाएगा। इसलिए दोस्तों, वृक्षारोपण को अभियान नहीं बल्कि जीवन का संस्कार हमें बनाना होगा।
0: बिल्कुल कशिश, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि मानव इतिहास पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि जहां जहां प्रकृति समृद्ध रही है वहां जीवन भी अधिक समृद्ध, सुंदर और सुरक्षित और संतुलित रहा है।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ केवल जंगलों की पहचान नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे अस्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। गाँव की चौपाल का बरगद, मंदिर का पीपल, खेत की मेड़ पर खड़ा नीम और आंगन का फलदार वृक्ष केवल पेड़ नहीं होते बल्कि वे समाज की स्मृतियों, भावनाओं और जीवन शैली का हिस्सा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज के दौर में जब मनुष्य तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है तब यह और भी जरूरी है कि वह प्रकृति के साथ अपने संबंधों को कमजोर ना होने दे। विकास तभी सार्थक है श्रोता साथियों जब वह जीवन को बेहतर बनाए, और जीवन तभी बेहतर बन सकता है जब पर्यावरण स्वस्थ हो।
1: जी हाँ,
0: धरती का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तो उसका प्रभाव समाज, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इसलिए वृक्षारोपण को केवल पर्यावरणीय गतिविधि के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक दायित्व के रूप में देखना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बात है आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना एक और प्यारा सा गीत हमारे साथियों को हम सुनवाएं।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से विदा लेना चाहेंगे।
1: जी हाँ।
0: आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो बातचीत रही है वृक्षारोपण के महत्व को लेकर, वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है साथियों 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानु सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर ही 9460051234। तो दोस्तों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडवारा से। फिल्म का नाम है आशिकी। गीत के बोल हैं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इस गीत की फरमाइश करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारिश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चिंपा। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही है मुरादाबाद से, माया देवी, ऋतिक, आदित्य जी कसाना, अजित कसाना। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, मोनू मानस जी राज। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते ही अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोका बलाई छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल हैं साजन साजन पुकारू गलियों में। इस गीत को आवाज़ दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करते हैं उत्तम कुमार सिंह जंगेल, मोरिस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल, नंदिनी जंगेल, सुकरी कला से जुड़ना चाह रही हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रही हैं शिषपाल जी और भी श्रोता साथी हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इस गीत के अनुरोध करता है मलियाना सरधाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बाबा कुटरी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान और डुग्गू जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा देवी शर्मा, सार्थक शर्मा और सचिन शर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं साजन साजन पुकारूं गलियों में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुर से। फिल्म का नाम है खलनायक, गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चली रहे। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। बागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर्ष शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, शुरभी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चली रे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना, गीत के बोल थे पालकी में होके सवार चली रे। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत के बोल हैं इरादा नजर मिल गई तो। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नेहरू चौक पेठण से, डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जादव, आरती जादव, प्रसाद जादव, सोनम जादव, बीबी सिया जादव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे हैं सोमनाथ जादव, गीता जादव, ओम जादव, सुभाष जादव, चंदन जादव, एकता जादव, संगीता जादव। इस गीत की अनुरोध करता है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, निट्टू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रही हैं पीयू सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का और भाविका जी सिक्का। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं गंजुडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बक्सर बिहार से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। इस गीत की फरमाइश करता है सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताब अंसारी। डुमराव बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अलीबा, वसीम जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, अहताब अंसारी, महताब अंसारी, मीरा अंसारी, कल्लूर मल्लू जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सप्रिल जी धाड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती जी बघेल। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से जून डिकेस्टो, रोजे डिकेस्टो, पर्ल डिकेस्टो, विलेज डिकेस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुनहाल जी मेहरा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ना चाह रहे हैं नारायण इगले, सोपान इगले, आशीष मेहकर जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, देवाग्न, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशान जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंढरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है दिल, गीत के बोल ही ओ प्रिया प्रिया क्यों बुला दिया। इस गीत की फरमाइश करता है साखिर मुलानी, समया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। भुलडाणा से दीपाली रामधाड़ी, स्वराज रामधाड़ी, अमरावती से जुड़ रही हैं सुनील तनुजा और तनुज पवन जी, और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं पंढरपुर सिटी से, यशराज सिंधी, प्रशांत सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं यटासी, नशीहब अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवीद हसन अब्बासी, सुनील हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, सियाज अब्बासी और रसीद जी अब्बासी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर जी, प्रमिला श्याम कुंवर जी, आशमा श्याम कुंवर जी और दीपक श्याम कुमार जी और अनुश्री जी, और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मीराब जहां जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सिंधी बुजुर्ग से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू वड़तकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रही है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रही है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं ओ प्रिया प्रिया क्यों बुला दिया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मजनू का टीला सी। गीत के बोल ही दिल ने ये कहा है दिल से। इस गीत की फरमाइश करता है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सताना एमपी से जुड़ रही हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहिची मलिक। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जंतीश कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमजीत सिंह। सलार बलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोड़ानी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजुडवारा से आशीन हाशमी, नवजा बेगम हाशमी, तोसीफ हाशमी, तोइनुर हाशमी और कलीम अंसारी जी। इस गीत के अनुरोध करता है सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी, हिमांश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल तो पागल है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है रंग, गीत की बोल है तुझे ना देखूं तो चैन आता नहीं है। इस गीत की फरमाइश करता है डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर समरराज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही वर्मा, ऐशिका वर्मा, श्वेताजी वर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य, सक्षम जी शाक्य। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पथरूट से विजय अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही तुझे ना देखो तो चैन आता नहीं है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, और स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत अच्छा चल रहा है, और एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी हम सुन रहे थे, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। श्रोता साथियों, जैसा कि ये सिलसिला हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक, तो आज भी सिलसिला ये जैसा कि बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा के साथ में, और अब आप इसे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो श्रोता साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ, और बढ़ना चाहूंगी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है धरती, गीत के बोल है ये मौसम भीगा भीगा। ये फरमाइश हमारे बीच आई है अम्बाला हरियाणा से। फरमाइश करता है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकिरत, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं और भी जो सुनना चाहते हैं इसी गीत को, सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना असम, अक्सा, नाजमा, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीप जी। जुड़ना चाह रहे हैं राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, प्रयागराज भट्ट, जासमिन भट्ट जी। कालीगांव जफराबाद से जुड़ना चाह रहे हैं सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख और प्रथमेश देशमुख, संचित वायल जी। इसी बीच साथी जुड़ रहे हैं गंज द्वारा गणेशपुर से भी, फिरासत हुसैन, अलक कमर जहां, मनफेज, नाहिरा गुड़िया, शिवराज, शिवरन जी और शिवाज शेख जी। आवारापुर से जुड़ना चाह रहे शेख अबीब, छोटू भाई शेख, साजन बेगम, फजान शेख, फारूक शेख, वसीम शेख, अफसाना शेख, अश्मिरा शेख, इरफान शेख, जिन्नत शेख, फरहान शेख, अब्दुल्लाह जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं ये मौसम भीगा भीगा है। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बीड शहर महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दोस्तों शोल्जर। गीत के बोल हैं शोल्जर शोल्जर मीठी बातें बोलकर। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी कुमार सानू जी ने और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नंदकिशोर कटे, संगीता कटे, साक्षी कटे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहुल, बीपी खुलते जी, कलानोर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा और भी साथी हमारे बीच जुड़ रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। धनोरी तेलीवाला से हैं निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी। साथी जुड़ रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजर नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं शोल्जर शोल्जर मीठी बातें बोलकर।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, हमारे साथियों को बताना चाहेंगे, लखनपुर छत्तीसगढ़ से। श्रोता साथियों, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है, गीत के बोल हैं बहुत जताते हो चाह हमसे। इस गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी और मोहम्मद अजीज जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे लखनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। इसी बीच श्रोता साथी जुड़ रहे हैं कुंभार गली कोलगांव से, पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश जी, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्हार जी। साथियों आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डाबेराव जी। मारवाड़ बिलड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। इसी बीच श्रीरामपुर से श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को, मनोरंजन करना चाह रहे हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, इश्के दले, जीविका दले, सनिका दले। पूना वाले पुड़े से अजय सोनवानी, करिश्मा अविका, सायसा सोनवानी, विशाखा मंगलकर जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं बहुत जताते हो चाह हमसे। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी। एकता कॉलोनी रोहतक से ये फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है दोस्ताना। गीत के बोल है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। एकता कॉलोनी रोहतक से फरमाइश करता जुड़ रहे हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा जी, तन्वी बोध जी, और भी साथी हमारे बीच जुड़ रहे राहुल नगर अमरावती से हैं अर्चना गुड़ाने, ही सिद्धार्थ गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी। उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, नरगिस खातून जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। बोरखेरा पित्रामल से हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी, दिशा कुश मुणत जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल है, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अब अगली फरमाइश का गीत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से ये आया है। फिल्म का नाम है राजा बाबू। गीत के बोल हैं, याद सताए तेरी नींद चुराई। इस गीत को आवाज़ दी कविता जी और उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मगल रोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हयांश कुमार चंदन और भी दोस्त हमारे इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी, जुड़ रहे हैं श्रोता साथी गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइश का बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश बुलढाणा महाराष्ट्र से आई है। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जो गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। समर्थ दादा देठे पाटिल, भगवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, सानिका देठे पाटिल, नादुरा से शिवाजी उगले, राहुल उगले, इन सभी श्रोता साथियों की फरमाइश है साजन फिल्म का गीत तू शायर है मैं तेरी शायरी। श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी इस गीत को आवाज दी है अलका याग्निक जी ने, और फरमाइश करता और भी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं ओदन पाल, जहीन पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त बघेल परिवार सदस्यगण। सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति, शिवांश वर्मा। गंजद्वारा से शमशुल कमर राय, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान। हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं भाई प्रेम सिंह वडवाल, सुखवीर लखीर वडवाल, लक्ष्मीर वडवाल जी और रानू कृष्णा, श्रीमती छिंदू, प्रवीण शीतल, नवीन अंगीला, निशान अनमोल, प्यारा बेटा, चटकू मटकू, महावीर, गीता मलकत, सुखचैन सिंह बूटा, धर्म सिंह बुक। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सद अब्बासी, नगद प्रवीण अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अब्बान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों के फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तू शायर है मैं तेरी शायरी।

दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा फरमाइश का गीत सुना साजन फिल्म का, कि तू शायर है मैं तेरी शायरी। इसी गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं एक और प्यारे से फरमाइश गीत की ओर। दोस्तों, फरमाइश का गीत अगला है, आपको बताना चाहूंगी, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। फिल्म का नाम है दीवाना। इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं अस्तपुरा जिला मऊ से हैं मजर अली अंसारी, रजा बेगम अंसारी, सादिक अंसारी गाजीपुर से, आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, फजल का पंजाब से भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दीवानशी खेड़ा जी और जीवन बुक जी, बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे जी, खंडाला से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे जी। दोस्तों, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी जुड़ना चाह रहे हैं। छत्रपति संभाजीनगर से राजस साबले पाटिल, राजीव राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी जुड़ना चाह रहे हैं। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गुरु मंदुरकर, यवतमाल से निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, अर्पिता जी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामरे, कन्ना मीना विशुल और विपुल कामरे जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, ऐसे दीवानगी देखी नहीं कहीं।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है साथियों नरसिंहगढ़ से ही आया है, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है कलंक। गीत के बोल है कलंक नहीं इश्क है पिया। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से, गोविंद वैष्णव, दिव्या, सोमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी जी। पटेल नगर मलोद से है रमेश कुमार जाजोरिया, गीतरनी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजे जाजोरिया और गुड्डू जी। इसी बीच साथी और भी हैं जो जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ कोरबा से, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, मानू शानू, बब्बन मोहनू काना और हरिप्रिया ईश्वर सिंह ठाकुर जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष जदा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल रचिता खुराना जी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। छत्तीसगढ़ से गुणन श्रीवास, कुणाल श्रीवास, आशीर्वास, विवेक श्रीवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनितराज, सुमित सोमानस राज। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं हेमंत नामदेव, नंदिनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन साहू जी। मस्तान पूर्णा जंक्शन से जुड़ना चाह रहे हैं अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत जी। साथियों उत्तराखंड पौड़ी गलवाल से हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका, सृष्टि बन्नी, आरुष शौर्य और दिनेश जी। इसी बीच साथी बाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, वेदई जोशी, अंशिका जोशी जी। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है कलंक नहीं इश्क है पिया। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे श्रोता साथियों हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए साथियों आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है समस्या समाधान, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। तो श्रोता जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा में आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे रात 9 बजे शाम कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोता शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा बाबर रेडियो। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
1: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
0: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, पोषण भी पक्कू।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
1: जी हाँ।
2: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और मनीषा हमारी बातें रहने वाली है कि माँ के हाथ के भोजन में प्रेम, स्मृति और पवित्रता होती है।
1: बिल्कुल
2: श्रोता साथियों, दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, चाहे खाने की हजारों नई चीजें बाजार में क्यों ना आ जाए, लेकिन एक स्वाद ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता है।
1: बिल्कुल,
2: वो है माँ के हाथ का भोजन। उस भोजन में केवल मसाले नहीं होते श्रोताओं, उसमें छिपा होता है प्रेम, उसमें बसी होती है यादें और उसमें समाई होती है एक अद्भुत पवित्रता। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम ही यही है कि माँ के हाथ के भोजन में होते हैं प्रेम, स्मृति और पवित्रता।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं माँ के हाथ के भोजन में होती है स्मृति, प्रेम और पवित्रता।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता, बल्कि वह भावनाओं, संस्कारों और रिश्तों का भी प्रतीक है।
1: जी हाँ,
0: दुनिया में चाहे कितने भी बड़े होटल, रेस्टोरेंट या फास्ट फूड क्यों ना आ जाए, लेकिन माँ के हाथ के भोजन का स्वाद और उसके महक कभी नहीं बदलती। श्रोता साथियों, इसमें केवल मसाले और घी नहीं होते, बल्कि माँ का इसने चिंता, आशीर्वाद और त्याग भी मिला होता है।
1: जी हाँ।
0: यही कारण है जागृति जी, जब कोई व्यक्ति घर से दूर जाता है तब उसे सबसे अधिक याद माँ के हाथ के भोजन की आती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। और हम देखते हैं कि जीवन की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत कुछ पा लेते हैं, जैसे कि नई तकनीक, आधुनिक सुविधाएं, बड़े बड़े होटल, साथियों और स्वाद से भरी दुनिया। लेकिन इन सब के बीच एक स्वाद ऐसा भी है जिसे कोई होटल, कोई शेफ या फिर कोई मशीन कभी नहीं बना सकती जागृति जी, और वो स्वाद है माँ के हाथ के भोजन का स्वाद।
0: जी हाँ।
1: साथियों, माँ के हाथ से बनी रोटी केवल आटा और पानी का मेल नहीं होती, उसमें माँ का स्नेह होता है, माँ की ममता होती है, उसकी चिंता होती है, उसका त्याग होता है और उसका आशीर्वाद भी मिला होता है।
2: जी हाँ।
1: इसी कारण से दोस्तों दुनिया के किसी भी कोने में हम पहुँच जाने के बाद भी सबसे अधिक याद माँ के खाने को ही करते हैं।
2: बिल्कुल कशिश, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खाना अक्सर केवल एक जरूरत बनकर रह गया है। लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं।
1: जी जी।
2: हम देखते हैं मनीषा कि जब माँ रसोई में खाना बनाती है तो वो केवल आटा, दाल और सब्जी नहीं पकाती, वो अपने बच्चों के लिए चिंता, स्नेह और दुआएं भी उसमें मिला देती है।
1: बिल्कुल,
2: जब माँ पूछती है बेटा खाना खाया, तो वो सिर्फ सवाल नहीं होता श्रोता साथियों, वह एक माँ का प्रेम होता है।
1: जी जी।
2: दुनिया के बड़े बड़े होटल स्वाद दे सकते हैं लेकिन अपनापन नहीं दे सकते।
1: जी हाँ।
2: महंगे रेस्टोरेंट सजावट दे सकते हैं लेकिन माँ जैसी आत्मीयता नहीं दे सकते श्रोता साथियों।
1: जी जी।
2: माँ के हाथ का साधारण सा भोजन भी मन को संतोष देता है क्योंकि उसमें भावनाओं की मिठास होती है।
1: जी हाँ।
2: कहा भी गया है कि माँ के हाथ का हर निवाला प्रेम से भर देता है जीवन का प्याला।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा आधुनिक जीवन शैली, पढ़ाई, नौकरी और सोशल मीडिया की भागदौड़ में इतना व्यस्त हो गया है कि वह घर और परिवार से दूर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: बाहर का चमकदार भोजन उसे आकर्षित करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि माँ के हाथ का भोजन केवल स्वाद नहीं बल्कि स्वास्थ्य, संस्कार और आत्मीयता का संगम है।
1: बिल्कुल,
0: माँ के हाथ के भोजन में स्मृति होती है क्योंकि वह बचपन की यादों को जीवित रखता है, प्रेम होता है क्योंकि श्रोता साथियों उसमें माँ का सच्चा स्नेह शामिल होता है, और पवित्रता होती है क्योंकि वह निस्वार्थ भावनाओं से बनाया जाता है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। और जैसा कि हम माँ के हाथ के भोजन के अनमोल स्वाद को लेकर बातचीत कर ही रहे हैं, तो देखते हैं कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तब उसकी पहली भूख माँ ही समझ पाती है।
0: जी,
1: वह बोल नहीं पाता जागृति जी, लेकिन माँ उसकी आंखों से पहचान लेती है कि उसे भूख लगी है।
2: जी हाँ।
1: धीरे धीरे श्रोता साथियों, वही माँ अपने हाथों से उसे पहला निवाला खिलाती है। माँ का भोजन इसलिए विशेष नहीं होता साथियों क्योंकि उसमें महंगे मसाले होते हैं।
2: जी हाँ।
1: बल्कि इसलिए भी विशेष होता है क्योंकि उसमें ढेर सारी भावनाएं होती हैं।
2: बिल्कुल,
1: जैसे कि एक साधारण दाल रोटी भी माँ के हाथों से बनकर अमृत जैसी लगती है। कई बार हम जागृति जी बाहर का पिज्जा, बर्गर या फास्ट फूड बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही चीजें हमें उबने लगती है।
2: जी हाँ।
1: परंतु माँ के हाथ की साधारण रोटी भी कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, हमें श्रोता साथियों अच्छी ही लगती है क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें अपनापन होता है।
2: जी बिल्कुल।
1: माँ जब खाना बनाती है तब वह केवल भोजन नहीं पका रही होती बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य और खुशी की चिंता भी उसमें शामिल कर रही होती है।
2: जी हाँ।
1: वह जानती है जागृति जी कि बच्चे को क्या पसंद आएगा, पिता को किस चीज से परहेज है और दादा दादी को कैसा भोजन चाहिए होता है।
2: बिल्कुल,
1: देख सकते हैं कि यही संवेदनशीलता माँ के भोजन को विशेष बनाती है।
2: जी हाँ।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से माँ के हाथ के भोजन में होती है स्मृति, प्रेम और पवित्रता को लेकर बातें चल ही रही हैं, और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
2: जी हाँ।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल
2: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि माँ के हाथ के भोजन में होते हैं प्रेम, स्मृति और पवित्रता, तो स्मृति की अगर बात करें मनीषा और कशिश, तो युवा साथियों को हम बताना चाहेंगे कि जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब बच्चे पढ़ाई, नौकरी या सपनों के कारण घर से दूर चले जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उस समय सबसे ज्यादा क्या याद आता है? माँ की डांट, घर की दीवारें? नहीं श्रोता साथियों, सबसे ज्यादा याद आता है माँ के हाथ का खाना।
1: बिल्कुल,
0: हॉस्टल में बैठा विद्यार्थी जब सूखी रोटी खाता है कशिश, तो उसे माँ के हाथ की गर्म फुल्के याद आती है।
1: जी जी,
0: शहर में नौकरी करने वाला युवक जब बाहर का खाना खाता है मनीषा, तो उसे माँ के हाथ की दाल की खुशबू की याद आती है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि माँ का भोजन केवल स्वाद नहीं देता, वो बचपन की यादें भी वापस ले आता है।
1: बिल्कुल,
0: माँ के हाथ की रसोई में त्योहारों की खुशियाँ होती है, बरसात की पकौड़ियाँ होती है, सर्दियों का हलवा होता है, बीमारी में बनाई गई खिचड़ी होती है। हर व्यंजन के साथ कोई न कोई स्मृति जुड़ी होती है दोस्तों
1: जी?
0: जब जीवन कठिन लगता है तब वही यादें हमें अंदर से मजबूत बनाती है।
1: बिल्कुल, हाँ।
0: माँ के हाथ का भोजन हमें ये एहसास दिलाता है श्रोता साथियों कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, घर का प्रेम हमेशा हमारा इंतजार करता रहेगा।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्रेम यदि कोई करता है तो वो है माँ। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए हर कठिनाई सह लेती है, यही प्रेम उसके हाथ के बने भोजन में दिखाई देता है।
1: बिल्कुल,
2: माँ हमेशा ये सोचती है कि उसके बच्चे क्या पसंद करते हैं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वह अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भोजन बनाती है।
1: बिल्कुल,
2: कई बार माँ स्वयं भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती।
1: जी हाँ।
2: हम देखते हैं कि जब बच्चा उदास होता है तब माँ उसका पसंदीदा भोजन बनाकर उसके मन को खुश करने की कोशिश करती है।
1: बिल्कुल,
2: जब बच्चा बीमार होता है तब माँ पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करती है।
1: बिल्कुल,
2: और उसके लिए हल्का और पौष्टिक भोजन बनाकर तैयार करती है। श्रोता साथियों, ये केवल कर्तव्य नहीं बल्कि सच्चा प्रेम होता है। आज के युवाओं को यह समझना चाहिए, माँ का प्रेम किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। बाहर के भोजन में स्वाद हो सकता है साथियों, लेकिन माँ के हाथ में जो भोजन होता है उसमें आत्मीयता होती है।
1: यही
2: आत्मीयता जीवन को सुंदर बनाती है।
1: जी हाँ।

0: निशा, इसी के साथ अगर बात करें माँ के भोजन की पवित्रता की, तो जैसा कि जागृति जी हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में भोजन को अन्न देवता कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, हमारे यहाँ भोजन बनाने को भी एक पवित्र कार्य माना जाता है। देखते हैं कि जब माँ रसोई में प्रवेश करती है तब वह स्वच्छता, श्रद्धा और सकारात्मक भाव लेकर भोजन बनाती है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं मन पर भी पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में श्रोता साथियों, यदि भोजन क्रोध, तनाव या फिर नकारात्मकता में बनाया जाए तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन माँ का भोजन अधिकतम प्रेम और शुभ भावना से ही बनता है। जागृति जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि माँ के द्वारा बनाया गया भोजन पवित्र होता है।
1: बिल्कुल।
0: भारतीय घरों में आज भी कई माताएं ऐसी हैं जो भोजन बनाने से पहले ईश्वर को याद करती हैं।
1: जी हाँ।
0: और कुछ घरों में तो पहलाने वाला गाय के लिए निकाला जाता है। जागृति जी,
1: जी हाँ।
0: और कुछ जगह पक्षियों के लिए दाना रखा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही ये जो परंपराएं हैं, ये केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि ये हमें ये सिखाती है कि भोजन केवल स्वयं के लिए नहीं बांटने के लिए भी बनाया जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे युवा साथियों को हम यही कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से कि आज तकनीक का युग है, मोबाइल, सोशल मीडिया और व्यस्त जीवन ने परिवारों के बीच दूरियां बढ़ा दी है। बहुत से युवा अपने माता पिता के साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन याद रखिए श्रोताओ, परिवार के साथ बैठकर खाना केवल परंपरा नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव का माध्यम भी है। जब हम अपने माँ के साथ बैठते हैं, उनके हाथ का खाना खाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो वो पल माँ के लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: युवा साथियों को चाहिए कि वे अपनी माँ के श्रम का सम्मान करें, कभी कभी रसोई में उनकी मदद करें, उनके हाथ के भोजन की प्रशंसा करें और ये महसूस करें श्रोता साथियों कि ये प्रेम हर किसी के नसीब में नहीं होता। जिस दिन माँ का हाथ सिर से उठ जाता है, उस दिन इंसान को समझ आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या था।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि यदि आज आपकी माँ आपके साथ है तो उनके हाथ के भोजन का सम्मान कीजिए, उनके प्रेम को समझिए, क्योंकि माँ का खाना केवल शरीर को ताकत नहीं देता, वो जीवन को संस्कार देता है, आत्मा को शांति देता है और दिल को अपनापन देता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे महंगा भोजन भी उस थाली के सामने छोटा है जिसमें माँ अपने हाथों से प्यार परोसती है। माँ के हाथ की रोटी में केवल स्वाद नहीं होता मनीषा और कशिश, उसमें प्रेम होता है, त्याग होता है, आशीर्वाद होता है और पूरा संसार होता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता का आप सम्मान करें, घर के भोजन का आदर करें और रिश्तों की मिठास को बनाए रखें।
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि माँ के हाथ के भोजन में केवल स्वाद नहीं होता, बल्कि स्मृति, प्रेम और पवित्रता का अद्भुत संगम होता है।
0: बिल्कुल।
2: वह भोजन व्यक्ति को उसके बचपन, परिवार और संस्कारों को जोड़कर रखता है। आधुनिक जीवन शैली के भागदौड़ में युवा चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को हासिल कर ले, लेकिन माँ के हाथ के भोजन का महत्व कभी नहीं भूल सकते।
0: बिल्कुल।
2: श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा अपने परिवार, अपनी संस्कृति और अपने जड़ों से जुड़े रहें। बाहर की चमक दमक के बीच उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चा सुख और शांति घर के प्रेम में छुपा हुआ है। माँ के हाथ का भोजन हमें यह सिखाता है साथियों कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती।
1: बिल्कुल।
2: प्रेम, अपनापन और आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। इसीलिए हर युवा को अपने माँ के प्रेम का सम्मान करना चाहिए और परिवार के साथ बिताए गए इन अनमोल पलों को संजो कर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आधुनिक बनना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना उससे भी जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: माँ के हाथ का भोजन केवल हमारे लिए स्वाद नहीं है, बल्कि संस्कृति है।
2: बिल्कुल।
0: साथियों, वो हमारे परिवार की आत्मा है, वो प्रेम की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति है। यदि आपकी माँ आज भी आपके लिए खाना बनाती है युवाओं, तो ये आपका सौभाग्य है। उनके हाथ का भोजन प्रेम से खाइए, उनके श्रम का आप सम्मान कीजिए और यदि संभव हो श्रोता साथियों, तो कभी कभी उनके लिए आप भी खाना बनाइए।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए, दुनिया का सबसे महंगा भोजन भी माँ के हाथ की सादी रोटी की बराबरी कभी नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि माँ के हाथ के भोजन में प्रेम होता है, उसमें ममता घुली हुई होती है, उसमें स्मृति होती है साथियों, क्योंकि वही हमें बचपन से जोड़ता है, उसमें पवित्रता है क्योंकि वह निस्वार्थ भावना से बनाया जाता है। तो ऐसे में आप आज से ये संकल्प ले कि आप अपने परिवार के साथ भोजन करेंगे।
1: जी हाँ।
0: माँ के श्रम का सम्मान करेंगे, अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे साथियों, और प्रेम से बने भोजन की महत्वता को समझेंगे।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें की कशिश, अब समय का मान रखते हुए विदा लेना चाहेंगे, पर विदा लेने से पहले जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से, बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और उन बातों को आप अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ विदा लेते हैं। आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, मासवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
3: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है गांव के बुजुर्ग और बच्चों के रिश्ते को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि गांव की सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है तो उसी के साथ आंगन में बैठा कोई दादा या दादी अपने पोते पोतियों को पुकारता है।
0: जी हाँ,
1: यह दृश्य सिर्फ एक रोजमर्रा की आदत नहीं कशिश, बल्कि गहरा और अनमोल रिश्ता है। बुजुर्ग जहाँ अनुभव का खजाना होते हैं, वहीं बच्चे मासूमियत और नई ऊर्जा का प्रतीक होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और दोनों का मिलन गांव की असली पहचान बनाता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना शुरुआत में पहले साथियों को हम मनोरंजन करवाएं इस गीत के साथ में।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: हम देख सकते हैं कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं, जीवन के सही गलत का फर्क बताते हैं, परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का भी काम करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ ही जो दादी नानी की कहानियाँ होती है वह केवल बच्चों के लिए मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की सबक भी होती है अंजलि जी।
1: जी हाँ,
0: इन कहानियों में छिपी सीख श्रोता साथियों बच्चों के चरित्र को मजबूत बनाती है।
1: इसी के साथ श्रोता साथियों बात करें तो बच्चे गांव की जान होते हैं, उनकी हंसी, शरारते और सवाल बुजुर्गों के जीवन में नई रोशनी लाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों की मासूम बातें बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करती है श्रोता साथियों, उनकी जिज्ञासा बुजुर्गों को भी सक्रिय और खुश रखती है। बच्चों के साथ समय बिताकर बुजुर्ग खुद को फिर से जवान महसूस करते हैं, इस तरह ये रिश्ता एक दूसरे को सहारा देता है।
0: जी,
1: इसी के साथ हम देखते हैं कि गांव में त्योहार, मेलों और रीति रिवाजों का विशेष महत्व होता है। इन सब का ज्ञान बच्चों तक पहुंचाने का काम बुजुर्ग ही करते हैं। त्योहारों की कहानियाँ, लोकगीत और कहावतें, खेत बाड़ी की पुरानी तरीके, ये सब बच्चे बुजुर्गों से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और यही सीख उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ कर रखती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। वहीं अगर हम बात करें तो आज के समय में ये रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। श्रोता साथियों, मोबाइल और टीवी ने बच्चों को दूर कर दिया है।
1: बिल्कुल,
0: संयुक्त परिवार टूटकर छोटे परिवारों में बदल गए हैं और बुजुर्गों को समय और सम्मान कम मिल रहा है अंजलि जी।
1: जी हाँ,
0: अगर देखें तो ये बदलाव चिंताजनक भी है दोस्तों, क्योंकि इससे बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और जो बुजुर्ग हैं वो अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि बदलते समय के साथ साथ इन दोनों पीढ़ियों का जो रिश्ता है वो कमजोर होता जा रहा है।
1: बिल्कुल, कह सकते हैं कशिश की इस खूबसूरत रिश्ते को बचाने के लिए हमें कुछ कदम भी उठाने होंगे, जैसे कि बच्चों को बुजुर्गों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करना है, बुजुर्गों की कहानियों और अनुभवों को महत्व देना है, परिवार में एक साथ बैठने और बात करने की परंपरा को जीवित रखना है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रम में बुजुर्गों की भागीदारी हमें बढ़ानी होगी। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि गांव के बुजुर्ग और बच्चों का रिश्ता एक पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें बुजुर्ग हैं और नई शाखाएं बच्चे। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो पेड़ भी हरा भरा रहेगा। अगर हम इस रिश्ते को खो देंगे तो हम न केवल अपने बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को भी खो देंगे।
0: जी हाँ,
1: हम सबको मिलकर कशिश संकल्प लेना होगा कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनसे सीखेंगे और बच्चों को उनसे जोड़ेंगे।
0: बिल्कुल,
1: ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस अनमोल रिश्ते की गर्माहट को महसूस कर सके।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर रहे हैं बुजुर्गों और बच्चों के रिश्तों को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और गीत यहाँ पर सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना था कि किस तरीके से गांव के बुजुर्ग और बच्चों का रिश्ता होता है।
1: बिल्कुल,
0: यही दोस्तों आपको एक कहानी हम सुनाने जा रहे हैं जो हर घर की सच्चाई है। एक दादा और उनके पोते की कहानी, रिश्ते की, अपनेपन की और उस खालीपन की जिसे सिर्फ प्यार से भरा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक गांव था श्रोता साथियों रामपुर, उसमें एक बूढ़े दादाजी रहते थे, नाम था रामकिशन। सफेद बाल, झुकी कमर, लेकिन आंखों में एक चमक जैसे आज भी जिंदगी से कुछ कहने को बाकी हो। उनका एक पोता था कशिश चिंटू। चिंटू बहुत चंचल, शरारती और सवालों से भरा हुआ बच्चा था। हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता चिंटू भागकर दादाजी के पास पहुंच जाता। दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? दादाजी भी मुस्कुराते और कहते, अरे आज तो एक बहादुर किसान की कहानी सुनाऊंगा। और फिर शुरू होती कहानियों की दुनिया, कभी राजा रानी, कभी जानवरों की बातें, तो कभी पुराने दिनों की सच्ची घटनाएं। इन सब के बीच रिश्तों में मिठास आती। चिंटू को दादाजी के साथ रहना सबसे अच्छा लगता था। वो उनके साथ खेत में जाता, पेड़ों के नीचे बैठता और मिट्टी में खेलता।
1: बिल्कुल।
0: दादाजी उसे सिखाते कशिश कि बेटा, पेड़ हमें बिना कुछ मांगे छांव देते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। चिंटू मासूमियत से पूछता, दादाजी आप भी पेड़ जैसे हो क्या? दादाजी हंसते हुए कहते, हाँ बेटा, और तुम मेरी छांव हो। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। चिंटू के पापा शहर से एक स्मार्टफोन लेकर आए। अब चिंटू का समय बदल गया, वो दादाजी के पास कम और मोबाइल के पास ज्यादा रहने लगा।
1: बिल्कुल।
0: चिंटू आज कहानी नहीं सुनोगे? दादाजी ने पूछा। नहीं दादाजी, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, चिंटू ने बिना देखे जवाब दिया। दादाजी की आंखों में हल्की उदासी छा गई। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी अब वहाँ सन्नाटा था। दिन बीतते गए, दादाजी अब ज्यादा चुप रहने लगे। जो उसी पेड़ के नीचे बैठते जहाँ कभी चिंटू उनके साथ खेलता था, अब वहाँ कशिश सिर्फ हवा चलती थी और यादें। एक दिन दादाजी ने धीरे से कहा, शायद अब मेरी कहानियाँ पुरानी हो गई है। एक दिन चिंटू स्कूल से लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। आसपास कोई नहीं था, चिंटू डर गया और रोने लगा। दादाजी, दादाजी दूर से यह देख रहे थे। अपनी कमजोरी के बावजूद वो दौड़ते हुए आए, उसे उठाया और गले लगा लिया। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं यही हूँ ना। उस पल चिंटू को एहसास हुआ कि मोबाइल का गेम उसे संभाल नहीं सकता, लेकिन दादाजी हमेशा उसके साथ हैं। उस दिन के बाद सब बदल गया। चिंटू फिर से दादाजी के पास बैठने लगा, कहानी सुनता, बातें करता और उनके साथ समय बिताता। एक दिन उसने दादाजी से कहा, दादाजी आपके बिना तो मेरा बचपन अधूरा है। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। तो श्रोता साथियों, ये कहानी सिर्फ चिंटू और उसके दादाजी की नहीं, ये कहानी हम सब की है। आज हम सब अपनी भागदौड़ में इतने खो गए हैं कि अपने ही घर के बुजुर्गों को समय देना भूल गए। याद रखिए कि बुजुर्ग हमारे अतीत का अनुभव है, हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर ये दोनों साथ हैं तो जीवन खूबसूरत है, और अगर ये दूर हो गए तो सब कुछ अधूरा है।
1: बिल्कुल।
0: एक छोटी सी बात, आज ही अपने घर के किसी बुजुर्ग के पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ आपके साथ बिताए उस पल का इंतजार कर रहे हो। तो कशिश, ये थी एक महत्वपूर्ण सी कहानी जो हमें सीख देती है कि किस तरीके से हमारे घर के बुजुर्ग और बच्चों का जो रिश्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। हम कह सकते हैं हमारे श्रोता साथियों को कि गांव के जो बुजुर्ग होते हैं और जो बच्चों का रिश्ता है, वो केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे जीवन मूल्यों की सबसे मजबूत कड़ी है।
0: जी जी।
1: क्योंकि अंजलि जी, जब एक बच्चा अपने दादा दादी के पास बैठकर उनकी कहानियाँ सुनता है, तो वह सिर्फ कहानी नहीं सुन रहा होता, बल्कि वह जीवन जीने का तरीका सीख रहा होता है।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, आज जरूरत बस इस बात की है कि हम इस रिश्ते को केवल यादों में न सिमटने दें, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में फिर से जिंदा रखें।
0: जी हाँ।
1: अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी, समझदार और संवेदनशील बने दोस्तों, तो उन्हें बुजुर्गों का साथ देना ही होगा। ऐसे में एक माता पिता होने के नाते हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, बल्कि उनके अनुभवों को अपनी ताकत बनाएंगे और बच्चों को उनके करीब लेकर जाएंगे। क्योंकि अंजलि जी, जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, वहीं सच्ची समृद्धि और खुशी बसती है।
0: बिल्कुल कशिश, समाज की मजबूती सिर्फ बड़े बड़े विकास कार्यों से नहीं होती, बल्कि उन छोटे छोटे रिश्तों से होती है जो दिलों को जोड़ते हैं। गांव के बुजुर्ग और बच्चों का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: अगर यह रिश्ता कमजोर होगा तो समाज की नींव भी कमजोर हो जाएगी। बच्चे बिना मार्गदर्शन के भटक सकते हैं और बुजुर्ग बिना सहारे के अकेले पड़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस रिश्ते को एक जिम्मेदारी की तरह समझें। हर परिवार, हर गांव, हर समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों को सम्मान मिले और बच्चों को उनका साथ। जब दोनों पीढ़ियां एक साथ चलेंगी तभी समाज सही दिशा में आगे बढ़ेगा।
1: जी हाँ दिलीप जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब हम देख भी रहे हैं कि समय हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और गीत के साथ मनोरंजन हम करवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, जो गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोताओ, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बोन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM मते ने आप सबनो घणे मान स्वागत करा हो हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे हमारे टाइम माते हाजिर थे सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज हमारे कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कि आदिवासी संस्कृति हरते बहुउद्देश्य कृषि वानिकी नो एक समाधान थी सके। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कानी बातें थायेगा पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले अपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: બાઈનબોનું ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફેરી આપ સબનું ઘણે માન સ્વાગત કરો હો અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈનબોનું ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે હરતે આદિવાસી સંસ્કૃતિ બહુઉદ્દેશ્ય કૃષિ વાનગીનું એક સમાધાન થઈ શકે. તો ભાઈનબોનો અણ વિષય માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષજી સર. તો સૌથી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલી.
0: સર આપકા બહુ બહુ સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુ બહુ ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ કે આદિવાસી સંસ્કૃતિ જો હૈ વો કિસ તરીકે સે વનો કે સંરક્ષણ મેં અપના યોગદાન દે સકતી હૈ. ક્યોંકિ હમ દેખતે હૈ કે વન હમારે લિયે બહુ મહત્વપૂર્ણ હૈ. અભી કે સમય મેં હમ દેખ રહે હૈ કે વનો કે સંરક્ષણ કો લેકર હર કોઈ પ્રયાસ કર રહા હૈ. और आदिवासी संस्कृति हम सभी जानते हैं कि उनका जुड़ाव हमारे वनों से हमारी प्रकृति से पहले से ही बना हुआ है. तो ऐसे में हम आज कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से आदिवासी संस्कृति जो है वो बहुउद्देश्य कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है.
1: जी बिल्कुल, ये बात सभी जानते हैं कि वन संरक्षण के जो प्रयास हैं और आदिवासी संस्कृति से इसका जुड़ाव बहुत ही एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो यदि वन संरक्षण के प्रयासों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान और लोक संस्कृति से जुड़े तरीकों का जो महत्व है उसका इनकी लोक संस्कृति में भी जो है निहित वनीकरण के जो सूत्र हैं वो अक्सर बड़े प्रभावी होते हैं और वो स्थायी भी होते हैं. वनों को जो बचाने में हमेशा से लोक संस्कृतियों का योगदान रहा है
0: बिल्कुल,
1: उसमें आदिवासी संस्कृति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है. और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि जो जंगल हमको दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण एक बड़ा जंगल हम देख पाते हैं. पेड़, वनस्पति, भोजन उत्पादन की प्रक्रिया, परागण करने वाले कीट, मिट्टी की उर्वरकता, जल स्रोतों और जलवायु संतुलन, इन सभी के लिए वन बहुत ही जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: और इसीलिए वन संरक्षण को सिर्फ वृक्षारोपण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ये एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की देखभाल का महत्वपूर्ण मसला है.
0: बिल्कुल.
1: तो जिसका उद्देश्य भी है कि वनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाएं, इसके संरक्षण के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम प्रोत्साहित करें और हम मिलके पेड़ लगाने की जो मुहिम है यहाँ तक सीमित न रह के इस पारिस्थितिक तंत्र की संपूर्णता से जुड़ी हुई सोच के साथ इसे अपने जीवन में उतारे.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि मैं फिर से बोलना चाहूंगा, वन है जो हमारे भोजन, पोषण, हमारी दवाइयां और हमारे पशुधन, इसी के साथ साथ हमारी मिट्टी और जल, इन सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण है.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से हमारे जो वन अभी के समय में बचे हुए हैं वो आदिवासी संस्कृति के एक जुड़ाव से, उनके प्रकृति के प्रति उनका जो समर्पण है उसकी वजह से हमें देखने को मिलते हैं. यहीं सर अभी के समय में क्या चुनौतियां हमारे सामने आती है वनीकरण को लेकर, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी.
1: जी, सामान्य रूप से यदि हम चुनौतियों की बात करें तो वनीकरण के जो कार्यक्रम है आजकल तो ज्यादातर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान दिया जाता है. प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से हम इसे ही वनीकरण का मुख्य तरीका मान लेते हैं. यह तरीका पर्यावरण के संपूर्ण पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है. अगर हम बात करें कि हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम देखते हैं कि कई बार वनीकरण में जिन प्रजातियों का चयन किया जाता है तो वो गैर स्थानीय प्रजातियां होती हैं.
0: बिल्कुल.
1: इसी कारण से कई बार ये हमारे पारिस्थितिक तंत्र के भी लिए नुकसानदायक होती है और वनीकरण के लिए किए गए हमारे जो प्रयास हैं उनमें हमें उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितना हमने उसके लिए प्रयास किए थे, वो चाहे हमारे आर्थिक हो या अन्य तरह के प्रयास हों.
0: जी जी.
1: इसी तरह से यदि हम देखें कि दक्षिणी राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहां वागड़ अंचल में, तो इसके दुष्प्रभावों को हम साफ देख सकते हैं. पारंपरिक रूप से राजस्थान के सामुदायिक वन और गोचर भूमि या चारागाह स्थानीय पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षित जगह हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ गैर स्थानीय पौधे काफी बड़ी मात्रा में लगा दिए गए हैं, जिससे न केवल स्थानीय घास की कुछ प्रजातियां विलुप्त हो रही है बल्कि वन्य जीव और परागण करने वाले कीटों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहा है।
0: जी बिल्कुल।
1: वन संरक्षण की योजनाओं में इन परिस्थिति की और सांस्कृतिक जरूरतों की ये एक तरह से अनदेखी है, जिससे वन प्रबंधन में एक रूपता और कृत्रिमता बढ़ गई है। यानी कि एक ही तरह के पेड़ हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि जैव विविधता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से ये जान पाए कि किस तरीके से वनीकरण के जो मौजूदा प्रयास हैं उसमें हमें कुछ चुनौतियां देखने को मिल रही है। नहीं सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्राकृतिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति का क्या योगदान है वन संरक्षण को लेकर।
1: पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संस्कृति वन संरक्षण के प्रयासों में जो इनके सांस्कृतिक तरीके हैं उनका बहुत विशेष महत्व है।
0: जी।
1: लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र अक्सर प्रभावी और स्थायी होते हैं। तो उदाहरण के लिए राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान को हम अगर देखें और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, तो पहला दृष्टिकोण प्रशासनिक है, जो कि एक मॉडल पे आधारित होता है।
0: जी।
1: जिसमें कई बार व्यवसायिक वृक्षारोपण को ही मुख्य उपाय मान लिया जाता है। तो वन विभाग का या प्रशासन का ये जो दृष्टिकोण है स्थानीय क्षेत्रों में अक्सर असफल हो जाता है।
0: जी।
1: क्योंकि ये कई प्रजातियां ऐसी होती है जो हमारे यहाँ की जलवायु के अनुरूप नहीं होती
0: है। जी।
1: तो यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वनीकरण के स्थानीय मॉडल अपनाए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण के बजाय पहले स्थानीय घास और पौधों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं।
0: जी जी।
1: और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाने की पहली सीढ़ी हम इन्हें मान सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब इसी तारतम्य में यदि हम दूसरे दृष्टिकोण की बात करें तो जो हमारा आदिवासी समुदाय है जिन्होंने अपनी पारंपरिक वनीकरण पद्धतियों का इस्तेमाल किया, उन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र की भूमि पर स्थानीय पौधों घासों का रोपण किया। जो जगह किन्हीं कारणों से या तो पेड़ों की कटाई से या किसी तरह की दूसरी परियोजनाओं में खत्म हो गई थी, वहां पौधारोपण के साथ साथ जल संरक्षण को भी प्राथमिकता दी गई।
0: जी जी।
1: और परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में वहां वन्य जीवों की भी वापसी हुई है, जल स्रोत पुनर्जीवित हुए हैं और समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र की झलक वहां नजर आने लगी है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि किस तरीके से हमारी जो संस्कृति है उनके प्रयासों को हम देखते हुए हमारे वनों को हम बचा सकते हैं और किस तरीके से ये चीजें पारंपरिक ज्ञान के तौर पर हमारे जो वन है उनको बचाने में योगदान दे सकती है। नहीं सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वन को बचाने के लिए जो नीतियां हम देखते हैं उसमें लोक संस्कृति की आखिरकार जरूरत क्यों है।
1: तो वन संरक्षण की मौजूदा नीतियों में पारिस्थितिकी तंत्र की स्थानीय जरूरतों और पारंपरिक ज्ञान को नजरअंदाज करना ही हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वनों की वास्तविक सुरक्षा और बहाली के लिए हमें वन संरक्षण में आदिवासी लोक संस्कृति को जगह देनी होगी। वनों की पारंपरिक अवधारणाएं जैसे हमारे वागड़ क्षेत्र में मातानुवन, देवनुवन की जो संस्कृति हमें वनों के स्थानीय संरक्षण के सही रास्ते दिखाती है, क्योंकि इस तरह से संरक्षित की गई जगह से उनके उत्पादों का उपयोग करने में तो कोई रोक नहीं है, पर यहां से पेड़ों को काटा नहीं जाता।
0: जी जी।
1: क्योंकि इन्हें देवी या देवता का प्रतीक भी माना जाता है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सामूहिक चेतना के सिद्धांत पे ये आधारित होते हैं, जिससे समाज में साझा विश्वास और मूल्यों की शक्ति पर जोर दिया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: यह समुदाय को प्रेरित करता है कि वे अपने पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाएं और वनों को एक पारिवारिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें।
0: जी जी।
1: इसलिए पारिवारिक स्तर पर बहुउद्देशीय कृषि वानिकी की अवधारणा भी एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकती है, जिससे समुदाय अपने पर्यावरण के साथ भावनात्मक और नैतिक जुड़ाव महसूस करते हैं।
0: जी जी।
1: वन संरक्षण और वनीकरण नीतियों में लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का समावेश अत्यंत आवश्यक है, जो आदिवासी संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: जब तक वनीकरण नीतियों में सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संस्कृति के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया जाएगा, तब तक पर्यावरणीय स्थिरता का हमारा जो सपना है वो भी पूरा करने में कठिनाइयां होगी।
0: जी जी।
1: वनों की वास्तविक भलाई के लिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटकर पारंपरिक और सामुदायिक उपायों को अपनाने की जरूरत है।
0: जी जी।
1: तो लोक संस्कृति में निहित वनीकरण के सूत्र ही हमें वनों के संरक्षण और इनके स्थायित्व की दिशा दिखाते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वनीकरण के लिए आदिवासी संस्कृति की जो चीजें हैं उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि आपने बताया कि आदिवासी संस्कृति में वनों को देवता या माता के तुल्य माना जाता है और उनकी कटाई नहीं की जाती है, तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से ये समझ पाए कि किस तरीके से आदिवासी जो संस्कृति है वो बहुउद्देश्यीय कृषि वानिकी का एक समाधान हो सकती है। तो सर, कार्यक्रम में बातें हमारी आपसे ढेर सारी हो गई है। आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વેસ્ટમાં મનીષજી સર જોડેતા કહતા ને એણે આપણાને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા કાની વાતે બતાડી હૈ। આશા કરા હો કે હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડા, પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર ગીતને મોરે પડા સૂટા।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में श्रोता साथियों आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्र रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें होने वाली है कि हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किस तरह से करें। जैसे कि श्रोता साथियों आपको बताए कि लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है। अंजलि, लोकतंत्र हमें सिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन संवाद का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं तब हम लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करते हैं।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वग रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और हमारी बातें भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन किस तरह से करें। तो अंजलि, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है।
1: बिल्कुल,
0: जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, अपनी राय व्यक्त करती है और अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करती है। लेकिन जब समाज में हिंसा बढ़ती है तो भय का वातावरण भी पैदा होता है।
1: जी जी,
0: भय और लोकतंत्र कभी साथ नहीं चल सकते। लोकतंत्र का आधार विश्वास, संवाद और सहिष्णुता, साथ ही सम्मान भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे बातों पर लोग गुस्से में आकर झगड़ा करने लगते हैं। कभी सड़क का विवाद, तो कभी परिवार में तनाव, तो कभी समाज में मतभेद और कभी विचारों के नाम पर टकराव। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हिंसा किसी समस्या का स्थायी समाधान है? लोकतंत्र हमें सिखाता है जागृति जी कि असहमति हो सकती है लेकिन दुश्मनी नहीं। विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सम्मान बना रहना चाहिए। लोकतंत्र की असली ताकत डंडे में नहीं, संवाद में होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हिंसा केवल किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने का नाम नहीं है। कटु शब्द बोलना, किसी का अपमान करना, धमकाना, नफरत फैलाना या किसी को मानसिक रूप से पीड़ा देना भी हिंसा का ही रूप है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति अपनी बात समझाने के लिए तर्क की जगह ताकत का प्रयोग करता है जागृति जी, तब हिंसा जन्म लेती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इतिहास गवाह है कि हिंसा ने कभी स्थायी शांति नहीं दी। हिंसा कुछ समय के लिए किसी को दबा सकती है लेकिन दिल नहीं जीत सकती।
0: बिल्कुल अंजलि, आज हम देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों ने साबित किया है कि विकास का रास्ता हिंसा से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों से होकर गुजरता है। जब लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, कानून का सम्मान करते हैं और मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं, तब समाज आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, हिंसा चाहे किसी भी रूप में हो, उसका परिणाम हमेशा विनाशी होता है। हिंसा परिवार को तोड़ती है, समाज में अविश्वास बढ़ाती है और राष्ट्र की प्रगति को रोकती है।
1: बिल्कुल,
0: एक पत्थर फेंकना आसान है लेकिन उसे टूटे विश्वास को जोड़ना बहुत कठिन होता है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम देखते हैं अंजलि कि छोटी से छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: शब्दों की हिंसा भी उतनी ही खतरनाक है श्रोता साथियों जितना शारीरिक हिंसा। कटु भाषा, अपमान और नफरत फैलाने वाले संदेश समाज को कमजोर करते हैं। लोकतंत्र हमें सिखाता है कि असहमति को सम्मान के साथ व्यक्त किया जाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आज हिंसा कई कारणों से बढ़ रही है। धैर्य की कमी इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि लोग तुरंत

0: हिंसा की बात होती है तो सबसे पहले स्मरण होता है महात्मा गांधी का।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी बड़े से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी।
1: जी हाँ,
0: उनका मानना था कि सच्ची ताकत हिंसा में नहीं बल्कि आत्मसंयम और सत्य में होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई दुनिया के इतिहास में एक अनोखा उदाहरण बन गया था। जब कई देशों में हथियारों से संघर्ष हो रहा था, तब भारत ने सत्य, अहिंसा और जनशक्ति के बल पर स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
0: बिल्कुल,
1: ये हमें बताता है कि परिवर्तन के लिए हिंसा आवश्यक नहीं है, दृढ़ संकल्प, एकता और लोकतांत्रिक सोच भी बड़े बदलाव ला सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जब किसी समाज में लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगते हैं, तब अराजकता फैलती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपनी नाराजगी हिंसा के माध्यम से व्यक्त करने लगे अंजलि, तो व्यवस्था चल ही नहीं सकती। इसीलिए श्रोताओं, लोकतंत्र हमें संवैधानिक रास्ते अपनाने की सीख देता है।
0: जी जी।
1: शिकायत हो तो संवाद करें, समस्या हो तो समाधान खोजें, और अन्याय हो तो कानूनी मार्ग को जरूर अपनाएं।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से महात्मा गांधी का जो संदेश था वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हमें हिंसा के रास्ते पर नहीं चलकर अहिंसा के रास्ते पर चलना है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र केवल संसद में नहीं होता, यह घर से शुरू होता है। जब परिवार में सभी बात सुनी जाती है, जब निर्णय मिलकर लिए जाते हैं, जब बच्चों को अपनी राय रखने का अवसर मिलता है, तब लोकतांत्रिक संस्कार विकसित होता है। इसी के साथ गांव और समाज में लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी सभी की होनी चाहिए, विवाद होने पर पंचायत और बातचीत का सहारा लेना है, अफवाहों से बचना है। इसी के साथ जागृति जी, सामाजिक एकता को हमें मजबूत करने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: महिलाओं और युवाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव से हमें बचना होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। युवा देश की ऊर्जा है, यदि यह ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगेगी तो राष्ट्र का निर्माण होगा।
0: जी जी।
1: लेकिन हम कह सकते हैं कि ये हिंसा की ओर मुड़ जाएगी तो विकास की गति रुक जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के मूल्यों को समझना बहुत जरूरी है और अपनाना भी बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं अंजलि कि लोकतंत्र का पहला मूल्य है सहिष्णुता। इसका अर्थ है कि हम दूसरों की बात को सुने, चाहे हम उससे सहमत हो या नहीं। दूसरा मूल्य होता है समानता, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा मूल्य होता है न्याय, जिससे समाज में विश्वास बना रहता है। चौथा मूल्य होता है भागीदारी, जिससे हर नागरिक सक्रिय भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल।
1: हम कह सकते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि गुस्से और हिंसा से उनकी बात जल्दी सुनी जाएगी, लेकिन श्रोताओं, इतिहास बताता है कि हिंसा से समस्या और बढ़ती है।
0: बिल्कुल।
1: संवाद से समाधान निकलता है, जबकि हिंसा केवल नए विवाद पैदा करती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी असहमति को दुश्मनी में न बदलें, अपने गुस्से को विश्वास का कारण न बनने दें और अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें।
1: बिल्कुल।
0: जब हम सुनना सीखते हैं, जब हम समझ पैदा करते हैं, जब हम बहुत सारी चीजों को सीख पाते हैं, तब विश्वास बनता है, और जब विश्वास बनता है तब एक मजबूत, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण होता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथी, हम नफरत की जगह संवाद कर सकते हैं, हिंसा की जगह सहमति जता सकते हैं और टकराव की जगह सहयोग का रास्ता चुन सकते हैं, और यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है।
1: बिल्कुल।
0: यही जिम्मेदार नागरिकता का प्रमाण है और यही एक बेहतर भारत की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
1: जी अंजलि, हम एक गांव की कल्पना करते हैं जहां दो समूह किसी मुद्दे पर असहमत हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथी, यदि दोनों पक्ष लड़ाई शुरू कर दे तो नुकसान पूरे गांव का होगा, लेकिन यदि वे बैठकर चर्चा करेंगे, पंचायत की सहायता लेंगे और मिलकर रास्ता खोजेंगे तो समस्याएं भी हल हो जाएंगी।
0: बिल्कुल।
1: और संबंध भी बने रहेंगे। यही लोकतांत्रिक सोच है श्रोता साथियों। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को भी लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा दें, उन्हें सिखाएं कि दूसरों का सम्मान करना, धैर्य रखना और मिलकर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है।
0: जी जी।
1: परिवार लोकतंत्र की पहली पाठशाला होती है। यदि परिवार में संवाद और सम्मान होगा तो समाज में भी यही संस्कार दिखाई देंगे।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं अंजलि कि लोकतंत्र केवल चुनाव के समय वोट डालने तक सीमित नहीं है, ये हर दिन के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, सड़क पर, विद्यालय में, कार्यस्थल पर और घर में भी। हमें लोकतांत्रिक सोच अपनानी होगी। जब हम दूसरों की बात सुनेंगे, नियमों का पालन करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखेंगे, तब हम लोकतंत्र को मजबूत बना पाएंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह हर व्यक्ति को महत्व देता है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ किसी की ताकत उसकी आवाज ऊंची होने से नहीं, बल्कि उसके विचारों की गुणवत्ता से पहचानी जाती है। इसलिए हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि बदलाव गुस्से से नहीं, जागरूकता से आता है, डर से नहीं, विश्वास से आता है, और टकराव से नहीं, सहयोग से आता है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, आने वाली पीढ़ियां हमसे केवल विरासत में जमीन जायदाद नहीं लेगी, बल्कि हमारे संस्कार, हमारी सोच और हमारा सामाजिक वातावरण भी प्राप्त करेगी। इसलिए जागृति जी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे समाज को सौंपे जहाँ मतभेद हो लेकिन मनभेद न हो, जहाँ विविधता हो लेकिन विभाजन न हो, और जहाँ व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित और सुना हुआ महसूस करे। हमें अपने गांव, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और अपने समाज में शांति, संवाद और सहयोग की संस्कृति को मजबूत करना है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि जब नागरिक लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तब केवल सरकारें नहीं, पूरा समाज बदलने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और यही सच्ची प्रगति है, यही सामाजिक परिपक्वता है, और यही वह मार्ग है श्रोता साथियों, जो हमें एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और मानवीय भविष्य की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम जाना चाहेंगे। पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि याद रखिए, लोकतंत्र की असली ताकत बंद मुट्ठियों में नहीं बल्कि जुड़े हुए हाथों में होती है। पत्थर उठाने वाला व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए चर्चा में आ सकता है, लेकिन संवाद करने वाला व्यक्ति पीढ़ियों तक सम्मान पाता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, समाज में शांति बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित भविष्य पाए, तो हमें हिंसा का मार्ग छोड़कर लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना होगा।
1: बिल्कुल,
0: असहमति हो सकती है लेकिन उसका समाधान संवाद से निकलेगा। मतभेद हो सकते हैं लेकिन उनका उत्तर सम्मान और धैर्य से मिलेगा।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम हिंसा नहीं संवाद को चुने, हम नफरत नहीं सम्मान चुनेंगे, हम टकराव नहीं सहयोग चुनेंगे, हम लोकतंत्र के मूल्यों का पालन करेंगे और एक मजबूत, शांतिपूर्ण तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि बातें ढेर सारी हो गई है और समय हो चला है विदा लेने का, विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे, ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए श्रोता साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है तनाव के स्वास्थ्य पर प्रभाव और बचाव के तरीके को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज, प्रतिस्पर्धात्मक, व्यस्त हो गया है। आधुनिक जीवन ने श्रोता साथियों हमें अनेक सुविधाएं दी हैं, लेकिन इसके साथ ही कई नई चुनौतियां भी पैदा हुई हैं।
0: जी हाँ,
1: इन्हीं चुनौतियों में से एक है तनाव। तनाव एक ऐसी मानसिक और शारीरिक अवस्था है मनीषा, जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति, समस्या या जिम्मेदारी को अपनी क्षमता से अधिक महसूस करता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं तनाव के हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसके क्या समाधान हैं।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आधुनिक जीवन में तनाव एक सामान्य समस्या बन गया है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से तनाव का सामना कर रहा है। विद्यार्थी को पढ़ाई और परीक्षा की चिंता रहती है, युवाओं को रोजगार और भविष्य की चिंता रहती है, किसानों को मौसम और फल की चिंता रहती है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि उनको परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का तनाव रहता है। श्रोता साथियों, यदि तनाव सीमित मात्रा में हो तो व्यक्ति बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है। लेकिन अंजलि जी, तनाव जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह शरीर, मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
1: बिल्कुल मनीषा,
0: हम देखते हैं कि तनाव केवल मन की स्थिति नहीं है साथियों, बल्कि यह हमारे पूरे शरीर और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसीलिए तनाव के दुष्परिणामों को समझना और उनके समाधान की दिशा में कार्य करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ मनीषा, हम देखते हैं कि कुछ मात्रा में तनाव व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है श्रोता साथियों, यह स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। तनाव केवल मन को ही नहीं बल्कि शरीर, व्यवहार, रिश्तों और कार्य क्षमता को भी प्रभावित करता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए श्रोता साथियों, तनाव को समझना और उससे बचाव के उपाय अपनाना आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है।
0: जी हाँ,
1: तनाव शरीर और मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब व्यक्ति किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करता है तो शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो उसे उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार करते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोता साथियों, जब यह स्थिति लगातार बनी रहती है और व्यक्ति को आराम या समाधान नहीं मिल पाता, तब तनाव समस्या का रूप ले लेता है।
0: बिल्कुल,
1: तनाव किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। बच्चे, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, विद्यार्थी, किसान, नौकरी पेशा लोग और गृहिणियां सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के तनाव का अनुभव करते ही हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि तनाव कई कारणों से हमारे जीवन में आ सकता है, जैसे कि आर्थिक समस्या, बेरोजगारी, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव, कार्यस्थल का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं, साथ ही अकेलापन और भविष्य की चिंताएं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये सभी जो कारण है, इन्हीं कारणों से हमारे जीवन में है वो तनाव जो है बढ़ता जाता है। यहीं अंजलि जी, तनाव के दुष्परिणामों की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा दुष्परिणाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि तनावग्रस्त व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित रहने लगता है, उसे हर समय किसी अनहोनी की आकांक्षा रहती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि अंजलि जी, जब व्यक्ति के अंदर तनाव होता है तो उसका आत्मविश्वास है वो भी कम हो जाता है। लगातार तनाव है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है, उसे लगता है कि वह किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि तनाव के कई कारण हैं, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, कार्यस्थल पर दबाव, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, सामाजिक अपेक्षाएं और डिजिटल जीवन में सोशल मीडिया।
0: जी हाँ,
1: इन सारी कारणों की वजह से हम देखते हैं कि मनुष्य को तनाव हो जाता है। हम देखते हैं कि इन सारी चीजों का स्वास्थ्य पर, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।
0: जी हाँ,
1: मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो हम देखते हैं कि तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार चिंता के कारण व्यक्ति हर समय चिंता में रहने लगता है।
0: जी हाँ,
1: उसे भविष्य की चिंता सताने लगती है, वह छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर व्यक्ति अवसाद का शिकार हो सकता है, उसे किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती और जीवन निराशाजनक लगने लगता है।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ तनाव व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, वह स्वयं पर विश्वास खोने लगता है। इसी के साथ श्रोता साथियों, बताना चाहेंगे कि व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तनाव के कारण सिर दर्द, माइग्रेन और गर्दन में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। लगातार तनाव रक्तचाप बढ़ा सकता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तनाव हृदय की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है और दिल की बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। तनाव के कारण गैस, अपच, कब्ज, पेट दर्द और भूख में कमी जैसी समस्या भी हो सकती है। तनावग्रस्त व्यक्ति जो होता है, उसे अच्छी नींद नहीं आती और रात भर करवटें बदलता रहता है और बार बार नींद टूटती रहती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे तनाव के हमारे जीवन में क्या दुष्परिणाम है और इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि जी, हमने जाना था कि तनाव क्या है, ये तनाव हमारे जीवन में किन कारणों से उत्पन्न होता है और तनाव के दुष्परिणाम क्या है।
1: बिल्कुल,
0: यहीं अगर हम बात करें सामाजिक जीवन में दुष्प्रभाव की, तो हम देखते हैं कि रिश्तों में दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। तनाव के कारण व्यक्ति अपने परिवार और मित्रों से दूरी बनाने लगता है। श्रोता साथियों, तनावग्रस्त व्यक्ति दूसरों से खुलकर बात नहीं कर पाता, जिससे उसकी गलत फहमियां हैं वो भी बढ़ती जाती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ऐसे लोग सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से भी अंजलि जी बचते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि तनाव व्यक्ति के व्यवहार में कई बदलाव लाता है। चिड़चिड़ापन बढ़ाना, गुस्सा अधिक आना, लोगों से दूरी बनाना, निर्णय लेने में कठिनाई, नकारात्मक सोच बढ़ाना, ये सभी तनाव के सामान्य लक्षण हैं।
0: बिल्कुल,
1: महिलाएं अक्सर घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं, इसलिए उनमें तनाव की संभावना अधिक हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हार्मोन असंतुलन, अनियमित मानसिक धर्म, थकान, कमजोरी, नींद की कमी, मानसिक दबाव, महिलाओं के लिए परिवार का सहयोग और स्वयं के लिए समय निकालना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरीके से हम कह सकते हैं श्रोता साथियों कि तनाव से बचाव के कई तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं, जैसे कि व्यायाम तनाव कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना, योग करना या हल्का व्यायाम करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे योग और ध्यान को भी हमें अपनाना है। योग और ध्यान मन को शांत करने में मदद करते हैं। नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है और मानसिक संतुलन बेहतर होता है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध और पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और तनाव से लड़ने में भी मदद करते हैं। कामों की प्राथमिकता तय करते हैं, समय का सही उपयोग करते हैं, इससे अनावश्यक जो दबाव है वो कम होता है।
0: जी हाँ।
1: इसी के साथ मनीषा बताना चाहेंगे श्रोता साथियों को, हर समस्या जो है उसके अवसर को हमें देखने की कोशिश करनी है।
0: जी हाँ।
1: उसे देखते देखते हमें उसकी आदत को तनाव के रूप में नहीं जाने देना है, इसलिए हमें हमारी सकारात्मक मानसिक मजबूती को बढ़ाने की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: अपनी समस्याओं को मन में दबाकर रखने के बजाय परिवार या मित्रों से साझा करें, बातचीत से मानसिक बोझ हल्का होता है।
0: जी हाँ।
1: मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें, वास्तविक जीवन के संबंध और गतिविधियों को महत्व दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि उन्हें समय का सही प्रबंधन करना है। समय का उचित उपयोग श्रोता साथियों तनाव को कम करता है। पहले अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें, आवश्यक कार्यों से बचे नहीं श्रोता साथियों, अनावश्यक कार्यों से बचने की कोशिश करें और समय का पूरा उपयोग करें। साथ ही श्रोता साथियों अपने परिवार और मित्रों से बातचीत करना शुरू करें।
1: बिल्कुल।
0: अपनी समस्याओं को दूसरों लोगों से साझा करें, जिससे आपका मन हल्का होगा और तनाव है वो भी कम होगा। साथ ही श्रोता साथियों, सोशल मीडिया का भी हमें सीमित उपयोग करना है। मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग चिंता और तनाव को बढ़ा सकता है अंजलि जी, इसीलिए इसका संतुलित उपयोग हमें करना है। श्रोता साथियों, साथ ही आप संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना, बागवानी करना या अन्य जो रचनात्मक कार्य होते हैं वो भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अंजलि जी, इन कार्यों से भी हमारा तनाव है वो काफी हद तक कम हो सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि तनाव केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक मुद्दा भी है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार में संवाद बढ़ाया जाए, बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए, महिलाओं को सहयोग और सम्मान दिया जाए, कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण बनाया जाए, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। जब समाज मानसिक स्वास्थ्य को उतना ही महत्व देगा जितना शारीरिक स्वास्थ्य को देता है, तब तनाव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तनाव आधुनिक जीवन की एक वास्तविकता है, लेकिन इसे जीवन पर हावी होने देना आवश्यक नहीं है। सही जीवन शैली, सकारात्मक सोच, नियमित व्यायाम, योग, संतुलन आहार और अच्छे सामाजिक संबंध तनाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ।
1: स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर की नींव है, इसलिए हमें तनाव के लक्षणों को समय रहते पहचानना चाहिए और उसके प्रभावी समाधान अपनाने चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से तनाव को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वाला अमर हित्ता भाई बोन ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई उन बोनो आप सब हमली रिया हो आपडु सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई उन बोनो लेने हाजिर थे गए हां कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाते मनीषा बोन आज कार्यक्रम में आपड़े भाई उन बोनो की बातचीत विषय है कि आपने देखी रहो कि अवनेना टाइम घना खरा जे भाई बोन है एना में नशा नी जे चीजे है ई वधी रही है ई वधारे नशो करे है ने एने कारण घना आका नी समस्याएं पैदा थई से है। ता सब समस्या नु समाधान आपने हरते करी शको ने हरते सब ने जागरूक करो कि नशा तकी दूर रहे एने बारे में आज आपने हंगरी वाते करवा वारा हो।
0: ઓવ્યંજલી બોન તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બોનો ખતી ઘણા કાની વાતે રેંગા અબર હામળા ગીત ને મોરે કરે આપણી વાતે
1: હવે તો ભાઈ બોનો આપ હંબર તો રેસુ આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગડ રેડિયો 90.8 FM માટે।

0: अंजलि बुन गीत त्या आंशू पुरु अना गीत बाद एक युगत फेरे आपड़े भाई बुनों नो स्वागत कर हूँ आपड़े आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में जिम के अंजलि बुन गीत थके पहले विषय बताड़ियो हतु कि आज आपण बात करवा वाला हूँ कि आपड़े जी भाई बहन ने अणा में नशा ने प्रवृत्ति बढ़ी रही है निवेना प्रभाव आपने हूँ देखाई दे एना आपण समस्या नो समाधान हूँ करी शकू। अंजलि बुन आपण देखा हूँ कि आज नो युग विज्ञान तकनीकी ने विकास नो युग है आपड़े मनकर ने जीवन में सुविधाएं ते अनेक बढ़ी गई है उपलब्धि भी घने आकानी हासिल कर ली दी है पण आ बीजी ओर आपण देखो हो कि समस्या भी बढ़ती जा रही है जी आपड़े देखो हो कि समाज बलते गंभीर चिंता नो विषय है अणा में आपण देखो हो कि नशा ने प्रवृत्ति सफती मोटी सामाजिक ने स्वास्थ्य संबंधी एक मोटी समस्या है नशो खाली केवल आपड़े व्यक्ति ने शरीर नती प्रभावित करते है बल्कि वणा ने परिवार ने समाज ने पूरा राष्ट्र ने भी प्रभावित करे है।
1: हवे मनीषाबेन आपड़े देखो हो कि नशो केवल एक आदत नती बल्कि आ एवी चीज है जे मनक ने जकड़ी ले है जे धीरे धीरे व्यक्ति ना स्वास्थ्य रिश्ता ने आर्थिक स्थिति ने भविष्य ने भी कमजोर करी दे है।
0: हवे
1: आज आपड़े देखो हो कि गाँव थकी लईने शहर उदी युवक हो वयस्क हो सबे नशा में डूबी चुके हैं ने आ समस्या जे है ई धीरे धीरे चिंता नो रूप ले रही है। आपड़े देखता हता कि कुछ दशक पहले गाँव में नशे नी समस्या नतन पण तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब ने आ जे चीजे हैं ई अवड़े आम बात थी गई है ने सब तक की मोटी चिंता नो विषय आ है कि घना खरा जे युवा है ये कम उम्र में अणी सब चीजों में नी गिरफ्त में आवी चुके हैं शुरुआत में मजाक जिज्ञासा ने दोस्तों ने दबाव में आता है पण धीरे धीरे आ एना नी लत बनी जाय है। आपणे देखो हो कि आ जे लत है ई घणी खराब है एने कारण आपणे देखो हो कि आपणे घर परिवार ने समाज नी जे स्थिति है ई भी खराब थवा लागी जाय है।
0: હવે અંજલિ બોન આયસ અગર વાત કરીએ કે આપણે નશાની જે પ્રવૃત્તિ બળી રહી એના હું કારણ હી તે આપણે દેખા હોય કે એક ગલત સંગતિ ભી થઈ શકે એમ અક્ષર આપણે યુવા ભાઈ હી વે દોસ્ત બનાવી હી વણને વેસને ભી હી અગર એક નશો કરી રહ્યો તો વો બીજા હારું બેગેગા तू भी एकदान करीन देख अच्छू लगेगा ने अपने भाई ही वी वणन वात में आवी जी है एकदान हूँ भी करीन देखो एकदान करवा खाती हूँ थाय पसे वेस आदत वणन ने धीरे धीरे लत बनी जाए है वे अणी प्रवृत्ति में पड़ी जाए एने साथ अपन देखा कि अणा खतो तनाव ने मानसिक दबाव भी आवे है ने घणा कन लोग भी आर्थिक समस्या ने परिवार ने नौकरी ने सभी समस्या ने खती बसवा बलदे आ नशा नो सेवन करे है कि अणा खती तनाव कम थी जाए।
1: हवे मनीषा बोन आपे सही कीधु आ एक मोटो भ्रम है आपणे मन कनु कि तनाव ने निराशा कम करवा बल्ले आपणे नशो करंगा तो आपणे आराम मिलेगा ई आराम थोड़ी देर नु रहे पसे एणाने स्वास्थ्य माते घणा कनु नुकसान थई शके एने साथे जागरूकता नी कमी ने कारण भी मनक जे है ई अणी सब चीजों में पड़ी जाय है। आय सवे वात करे के आना हूँ दुष्परिणाम है तो आपणे देखो हो कि स्वास्थ्य माते आनु घणा कनु प्रभाव पड़े है फेफड़ानी बीमारी हृदय रोग कैंसर नु खतरो लीवर नी समस्या मानसिक स्वास्थ्य माते बुरु प्रभाव पड़े है जे आपणे गंभीर समस्या उत्पन्न करी शके એને સાથે નશાની લત મેં પરિવારની જે ખુશી હે એ ભી ખતમ થઈ જાય હે અક્સર આપણે દેખો હો કે જે મનક આણી સબ ચીજો મેં રહે હે એણાને ઘર મેં ઝઘડા વધે હે ભણાઈ પ્રભાવિત થાય હે પરિવાર આર્થિક સંકટ થકી ગુજરે હે ને રિશ્તો મેં વિશ્વાસ ભી કમ થઈ જાય હે એને સાથે ભાઈ બહેનો નશો જે હે એ સમાજ મેં અપરાધ હિંસા અસુરક્ષાને વધાવે હે જેન થકી આપણે દેખો હો કે હેતુ સમાજ પ્રભાવિત થઈ જા।
0: હવે અંજલિ બોન આ તે આપણે ભાઈ બહેનોને તમે બતાડ્યું કે આ શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે હું પ્રભાવ નાખી હે આજ ભાઈ બોને ને અગર વતાણ કે આનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે હું પ્રભાવ પડે એમ તે આપણ ભાઈ બોનો દેખો હો કે આપણ અગર નશો કરે હો તે આના ખાતે આપણે માનસિક સંતુલન હે વો ભી બગડી શકે એમ આપણે માય ચીડચીડ ઉપર આવી જાય અવસાદ પેદા થઈ જી ચિંતા આવી જાય ને યાદાશ્ત ની કમી ભી અંજલિ બોન મહેસૂસ થવા માંડી જાય ને આપણે

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है।

0: तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर

के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।